जगत की मपु इबुंगो श्री श्री जगन्नाथ जगन्नाथ देवता ताइबंग पालपुंब की मरुप्लोई तोलब खुइना खुरुम चरी।

आकाश पानी फाल होजिक नसी नौ मगी चैनल असिद जथा जगदब थौरम सिंह समलपन खंगंजवी अयुक पुंग तरुक कमी तरह चत्प मतम संदोक चगनी लहु सिंगू की वाफम मोरो की लैना तुना अयुक पुंग तरुक कमी तरह मंगा तहन जगनी सरांग थेम थरोंगांग भी लई मन सकप मेत इसई अयुक पुंग तरुक मखाई संदोक चगनी सही सकप अहम दगी मणिपुरी मतम इसई मथंग मथंग होना अयुक पुंग तरुक का मिनट निफू मंगा लांथोक चगनी मणिपुरी मतम इसई अयुक पुंग तरह ताब मतम संदोक चगनी महौसागुम खोंजल नाचों ngasi gi nachom da pujaragli manipuri matami sei ayupung taruk tariet ka minit ni phuchat pa matam da tahan jagani arambam tombinau debi amadi kangbudagi khubag isei konsam ni shantna khongbagita tahan jagani ayupung tare ka minit nya khaimanga

0: खोंजेल नाचोम ताबीरे आकाशवाणी इम्फाल हजिगयू की पुंग तरेत मखाई तारे मणिपुरी द पाव ताबीरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाव पाजरी अहमद मरवय पाव देंगी लैना संदोक्त्रिंगैद सेक्शन थौरांग सिंग लौखतुना ङाक्तोक हौनबा राज्यपाल अजय कुमार भलान आपिल तौरी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना सभापति ओइदुना एग्रीकल्चर अमसुंग हॉर्टिकल्चर एंड सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट सिंग थबक थौरम सिंग हन्ने येंगसिनख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना हरियाणा पंजाब अमसुंग चंडीगढ़दा प्रोजेक्ट कया संगाख्रे खरगिना उरेप उयुम तमख्रे राज्यपाल अजय कुमार भला नहारी देंगी लैना संदोरक्त्रिंगैद सेक्शन थौरांग सिंग लौखतुना देंगी लैना लैतब राज्य अम ओहिलासी राज्यपाल थादोरक पुवारोलमद हाय देंगी लैना असी मतम चान सेक्शन थौरांग सिंग लौखतुना ङाक्तोक पुंगम्ब लैना मखलमनी मिकुप खरखक सेक्शन थौरांग लौहबना पुंसी कया कनम गमगदोरिबनी अतुंग इसिंग सिंग लहिलोसी कांग सिक्तनब सेक्शन थौरांग सिंग लौखसी देंगी मानब चिंगनब लायोंग सिंग थेंगनबगा मतम चान लायेंग थोक्सी अखोई पुनः थौदांग लौमीदना मणिपुर बो देंगी लैना लैतब लमदम अम ओहिलासी हैनसु राज्यपाल आपिल तौरी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना सभापति ओइदुना ङरांग पांगथोखिबा एग्रीकल्चर अमदि हॉर्टिकल्चर एंड सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट सिंगी मकोक थोंबो ऑफिसियल सिंग याव मिफमना डिपार्टमेंट अनी असिगी थबक थौरम सिंग हन्ने येंगसिनख्रे तुंगद मुख्यमंत्री ने थादोरक पुवारोलमद हाय मिफम अदुना डिपार्टमेंट सिंग असिगी मखाद पाइखलिबा तोंगान तोंगान बे स्कीम सिंग डिपार्टमेंट सिंग असिगी अचीवमेंट सिंग अमसुंग थेंगनरीबा सिंगनब सिंगी मतांगद कुमन खना नेनकी मिफम अदुना केंद्र सरकार की मखाद पाइखलिबा तोंगान तोंगान बे स्कीम सिंग स्टेट प्लान की स्कीम सिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिंग एनईसी प्रोग्राम सिंग अमसुंग अतई मरुएब थौसल थौरांग कया की मतांगद सुखनकी मुख्यमंत्री नहाय एग्रीकल्चर मसुंग हॉर्टिकल्चर सेक्टर बो हेन मापांगन कंखन हंदुना मणिपुर की लौमी मियाम बो हेन नुंगाई याइफ ओहेनब असेट फिरेप अमग लोइनना सरकार न कन्न होनारी सेक्युरिटी फोर्स न सिंगना मापम सिंगदा एरिया डोमिनेशन मसुंग ऑपरेशन चथब लेप्त्री मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम की पाउन हाय बिष्णुपुर जिला की निंगथोखोंग लोकताक प्रोजेक्ट एरिया दगे सेक्युरिटी फोर्स ना मणिपुर पीपल्स डिफेंस फोर्स MPDF की मियोय अम फारे मंगोंद की मैगजीन याव 0.32 की पिस्तोल मरु मंगा सेल ओइना लुपा लाख अम फागतले थौबाल जिला की थौबाल हाउखा एरिया की ङरांग सेक्युरिटी फोर्स ना सोरेपा की मियोय अम फारे जिरीबांग की लंखाई बाजार एरिया ना मणिपुर पुलिस ने ङरांग गंजा किलोग्राम 56 ग्राम 95 मियोय अम दगी फारे मियोय दु लखीपुर सिंखा वार्ड नंबर 9 दगी निहारी अमरम थौबाल जिला की लिलोंग लैहाउ खोंग लैनुंग होटल मनिंग लैब मियोय अमगी युमदगी कोडेन कफ सिरप एन 10 टैबलेट अमसुंग त्रोपास प्लस कैप्सूल सिंगसु फागत लेहारी थाईलैंड के बैंकॉक तो पांगतोप तारा निथुसुब एशियन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप त मणिपुर के लाइटोंजम लंचन बना मेन्स 100 मीटर बटरफ्लाई 101-102 कैटेगोरी द संजंगी तकमान लौरपद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना नुंगाई फोंदोख्रे मुख्यमंत्री ने थादोरक पुवारोलमद हाय लाइटोंजम लंचेनबगी होनब कनब मसुंग इरोयबगी लमद थोयदोक हेंदोक पाहि सिंगब सिंगना पुरकपा महाकी माई पाक पसिना मणिपुर मसुंग लैबाक असिबु साउथोक चब फंगलले महाकी माई पाक पसिना राज्यसिग हौरकलिब स्विमर सिंगद चाउन इथिल पिरगनी मखा तान कन होनदुना हेन चाउ मिंगच सिंग पुरक पंगम ओइरसनु हायनासु मुख्यमंत्री ना फोंदोकली जॉर्डन के अमान फांगथोकपा एशियन कैडेट जुडो चैंपियनशिप द मणिपुर की जेनी चनम्बम ना किलोग्राम 53 की कांगलुप्त संगजंग तकमान फंगलकले महाक मयांग इम्फाल थाना मनिंग खुनौ दगिनी ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना

0: पाई।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: केंद्र की मापान थोरम मंत्रालय ने हायरी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की मतांग भारत अमसुंग जापान की मरक पाव फाउनदुना प्रोजेक्ट असी माई पाकना पाइखनब लेप्तना होनारी। मापान थोरम मंत्रालय की मचन चप मिसक रणधीर जायसवाल ने हाई जापान ना ई 20 रेलगारी सिंह कुमजाले सिंह ने कुंथ्रा की अंगन में सरुक्त पीरकनी मसीदमक रेलगारी सिंह अदू श्याम साबक थबक कन चथरी। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सेंगो सागरप की थबकसु खोंगजल यांग ने संगसिली प्रोजेक्ट असगी अहान सेक्शन मथंग सही फाउ की मनुंग सिजनब हव यारगनी। केंद्र की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने हायरी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मखाद लैबाक असगी मियामद लुपा कोटि लाख अम लिंग मरीफू तरह रोंग चांगद सेल तिंगदा लाइंग की खुदचाब पीख्रे। स्कीम असी चनब की मतांगद फांगथोखिब हन्न यंगसिनब की मिफमद वांग गांगलदुना प्रधानमंत्री ने हाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मखाद मियोय कोटि मरीफू तरह मरी हेनमना आभा नंबर चन्म गमले मसीना अनालायंग मरी लेनब रेकॉर्ड कोटि चामरोम समनहनब गमले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लैबाक अहम मोलदोबा नॉर्थ मैक्डोनिया मसुंग रोमानिया खोंचट किदमक हयेंगद की खोंगसा लगनी। मापान थोरम मंत्रालय की सेक्रेटरी वेस्ट शिबी जॉर्ज ने न्यू दिल्ली दा पाउमी सिंह हाई राष्ट्रपति की खोंचट असी लैबाक सिंह असी लुसिंग सिंह बाटोन तौरपदी चटपनी मान हाई रिपब्लिक ऑफ मोलदोबा मसुंग नॉर्थ मैक्डोनिया दा भारत की राष्ट्रपति मन चटप असी हंदक की असी अहम खोंचट होरगनी। नसी फोंगब पाउसी सिंह मरुआ पाउसी दम हौजिक वाहिंगबम शालिनी लेरे शालिनी
2: थागचरी किरण मणिपुर की प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा हेल्थ कार्ड सिंह चटनारोदौरी हाइब पाउना संगा एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की अहानब हेडलाइन ओइना फोंगली। जेंडर की मतांगद अखन्नब ट्रेनिंग पीरगा कोबरा बटालियन अनी मणिपुरदा थाजिलखरे हाइब पाउना नहरोल की थौदांगी अहानब हेडलाइन ओइरी। एम्बुस चथग्रब मतुंगदा राज्य असीदा सीआरपीएफ ना ngaksel की थबक खंखतखिबगी पाउना द पीपल्स क्रॉनिकल की अहानब हेडलाइन तौरी। मणिपुरदा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ख्वाइदगी मसिंग यामना डिप्लोय तौब स्टेट ओइरे। मणिपुरदा लैरिब कोबरा कमांडो लिसिंग अनी रोम याउना सीआरपीएफ पर्सनेल सिंह लिसिंग कुन्निथोयदा बुलेट प्रूफ गाड़ी सिजिनानब पौताक पीख्रे हाइब पाउना हुएन लनपाउगी अनी सुब हेडलाइन तौरी। फिशरीज डिपार्टमेंटना ngagi पोथोक मरांग काइना पुथोकपगी मतांगदा फोंदोकखिब वाफमना मणिपुर मेल की अहानब हेडलाइन तौरी। नीट पास तौबदा मणिपुर ना चादा हुंफू दशमिक मापन अहुम पास तौदना अवांग नोंगपोक लमदमदा ख्वाइदगी वांगबा ओइरे हाइबा पाव संगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन की अनिसुब हेडलाइन तौरी। बांग्लादेश मचासिंग इंडियादा लैसिनहनब फोरेनर सिंगना फंडिंग तौरमबा थेंगनरे हाइबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की वाफमना सना लैबा की अनिसुब हेडलाइन तौरी। यूएसए न कौना की लैपटॉप बैग श्रीलंका ने एम्ब्रॉयडरी तौब कौना की बैग ऑर्डर तौरकले हाइब पाउना पोक्नफम की अनिसुब हेडलाइन ओइरी। सेनापति एक्साइज ना युंगौ फागतुना मांगनखिबगी पाउना हिल्स होनबिल एक्सप्रेस ता मरुओइब पाउ ओइना फोंगली। नीति आयोग ना फोंदोकपा अहानब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ता अवांग नोंगपोक राज्य सिंगी मनुंगदा असम ना अहानब ओइरे मेघालिया अमसुंग नागालैंड ना फिबम फगलकलिब राज्य सिंग ओइरे हाइब पाउना गानफ्यू मेलगी मरुओइब पाउ ओइना फोंगली। अवांग नोंगपोक राज्य सिंगदा लाकलिब नुमितारेट नि लेप्तन नोंगचुगनी हाइब मेट डिपार्टमेंट ना फोंदोकप वाफम ना तमेंगलोंग टाइम्स की मरुओइब पाउ ओइन फोंगली। किरण
0: थागचरी सालिनी अरोइब द मरुओइब पाउ अमहन्ना देंगी लैना संदोक्त्रिंगे द सेक्शन थोरांग सिंह लोकतुन ngaktok हंगना राज्यपाल अजय कुमार भला।

0: आकाशवाणी इम्फाल हजुरगायो कि पुंग नेपाल तारे दिल्लीदगी रिलेदा समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज अमदि शिलोंगदगी रिलेदा अवांग नोंपो कि पाव मथंग मथंग ओइना ताबा फंबिरगनी।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
4: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
4: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
10: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है
9: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat Railway Stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. More from our correspondent.
11: Union Home Minister Amit Shah arrived at Baghdogra last night on a three-day visit to West Bengal. Today he will visit two border security force camps in North Bengal and address a Prohari Shambelan. He is also scheduled to hold a series of meetings at Uttarakhand on issues concerning the border areas of North Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari and senior state government officials are likely to attend the meetings. Mr. Shah will travel to Kolkata this evening. Tomorrow, the Union Home Minister will review the law and order situation in the state at a meeting with senior Polish officials. He is also scheduled to attend a function at National Library and participate in the foundation stone laying ceremony of the Amul Dairy Plant at Dhulagarh from the Bishwa Bangla Convention Center. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
9: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis will jointly lay the foundation stone for three major national highway projects worth over 16,700 crore rupees in Pune today. The projects are expected to enhance connectivity, reduce travel time and traffic congestion

0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯒꯣꯔꯥꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯐ ꯗꯦꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯐ ꯀꯤ 13ꯁꯨꯕ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁ ꯑꯁꯥꯀꯣ ꯊꯔꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯈꯔꯅ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯈꯔꯅ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯠꯀꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯅꯦꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 16,600,000,000 ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯐ ꯗꯦꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯛꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯚꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏ
1: Investigation procedures, framing of charges, evidentiary standards, trial management, arrest and bail, preventive detention and procedural safeguards, the participation of distinguished former judges of the Supreme Court and High Courts, eminent prosecutors and senior advocates will undoubtedly enrich these deliberations and provide valuable practical insights. For a state like Manipur, which continues to strive for lasting peace, stability and development, an efficient, transparent and citizen-friendly criminal justice system assumes even greater significance. Effective implementation of the new Nyaya Sanhitas will strengthen public confidence, improve access to justice and contribute significantly towards maintaining peace and rule of law.
0: ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯃꯕꯥꯡꯉꯟ ꯀꯟꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯒꯅꯇꯟꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯁꯨꯝ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯛꯁꯥ ꯉꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯕꯟ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ 26ꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯦꯅꯥꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯣꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯆꯤꯐ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ
2: ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅ ꯃꯇꯝꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯎ ꯌꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇ ꯎ ꯌꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯎꯠꯁꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯎ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯖꯔꯤ
0: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯄ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯗꯤꯈꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯌꯦꯟꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯔꯠ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯟ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎ ꯊꯥꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯥꯔꯠ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯐꯣꯡꯒꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯏ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯨ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯎꯃꯪ ꯀꯟꯕ ꯎꯃꯪ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 23ꯇ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ खैजीरबाम पाउमी गाथे बेसोजेन पुलिस की पाउक पलेतुन हाय गासी आयो पोचे पुब गाडी साम यांखै इम्फाल गिदमक जिरेबाम थादोख्रे गाडी सिंग अदुग मनुंग द एलपीसी पुब गाडी कुंतरुक पेट्रोल पुब गाडी तरा मंगा डीजल पुब गाडी तरा तरुक हिदा लांगथक पोचे पुब गाडी मापन जेन मेसेज पुब गाडी तरा ट्रांसपोर्ट की गाड़ी कुलहुम दोय ऑनलाइन की पोचे पुब गाड़ी मरी सीमेंट पुब गाड़ी मरी अमद अते अते पोलम सिंह पुब गाड़ी सिंह याउरी हौजिक जिरीबाम द टैंकर हमद्रा याउना ट्रक चहुम मरी पंदुन लेहौरी ताबिरीब पाव से आकाशवाणी इम्फाल दगिनी गृहमंत्री अमित शाह नुकसु बेंगोल की भारत बंगलादेश गमखई बीएसएफ की तरानिपानसुब बटालियन बॉर्डर आउटपोस्ट भारत बंगलादेश गमखई तोान तोान बीएसएफ कमी लेने मचाको थौरान की प्रोजेक्ट खरन संगागनी खरन उरेब उयुंग तमगनी गंखई गाक सेनबा सिक्यूरीटी की मरी लेने सिरुरीद मंत्री सभापति मिफम पांथोकनी गृहमंत्री अमित शाह नुमित हमने खोचद बागदौरा थूंगी बॉर्डर सिक्यूरीटी फोर्स के कैम चतकनी प्रहारी सम्मेलन सूवांगांगनी गृहमंत्री नॉर्थ बेंगोल की गमखई पनी फीवम मिफम पांथोकनी खोचद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार की मकोक थोंब ऑफिसियल सरुक यागनी श्री शाह कोलकाता थूंगनी गृहमंत्री अमित शाह हयेंग राज्य शांति रक्षा की फीवम मकोक थोंब पुलिस ऑफिसियल उन हनेंगदौरी नेशनल लाइब्रेरी पांथोब थोरम सरुक यागनी विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर अमूल डायरी प्लान हांगदोकनी केंद्र के रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नंगासी पुणे लुपा कोटी लिंग तरह चाटे संग पाखेद अचौब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अहम की उरेब उयुंग तमगनी प्रोजेक्ट राज्य की कनेक्टिविटी चथो चचिन ट्राफिक की फीवम हंथन उद्योग सेल थू की फीवम फगतन चौना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने भारत की इलेक्शन कमीशन से माले की खाई तसें तसेंब अचुम तब मिखल की मेनेजमेंट बोडी गणतंत्र चप तोान तोब भारत की मिखल थब थोरम मोडल यंगली इसी ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस कुंतरुक वाद श्री ज्ञानेश कुमार ने भारत की मिखल मैं मसान पाजब मूस खजबली मांग इसी माले की खाई चाव मिखल की मेनेजमेंट बोडी तोान तोब इलेक्शन ऑफिसियल लातना भारत की इलेक्शन की थब थोरम यंगनरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माले की तोान तोब गणतंत्र चप निफुरम लेबागत लातना भारत की मिखल की मेनेजमेंट सिस्टम कूपनायेंगली मिफम से इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मेनेजमेंट न्यू दिल्ली सिनबनी मिफम की हिरमद कनेक्टिंग स्टेक होल्डर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी द रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अहम मोलदोबा नोट मेकडोनिया रोमानिया खोचित किदम हयें भारत थादोकलगनी मपाल थलों मंत्रालय के सेक्रेटरी वेस्ट जी बी जॉर्ज ने न्यू दिल्ली पाउंबिंग राष्ट्रपति खोचित लेबाब बटन तरपदी चटपनी मांग रिपब्लिक ऑफ मोलदोबा नोट मेकडोनिया भारत के राष्ट्रपति चप की अहम खोचित रोमानिया भारत के राष्ट्रपति ने चपना सही कुंथ्रा की हंत की अहमनी राष्ट्रपति खोचित भारत की मई थब नौ थब यूरोप की लेबाब मरी हेन चुशिलगनी केंद्र की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मखा लेबाब लुपा कोटि लाख लिंग फुजारोम की चांग सेल तिंगना लयंग खुद पीख्रे स्कीम चलने पांथी हनें मिफम वाला मंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मखा मई कोटि मफुद्रा मरी हेन आवा नंबर चल गमले अना लयंग मरी लेनब रिकॉर्ड कोटि चामोरम सामने हौजिक अरोबद पाव हा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की मांग सेमिनार इम्फाल की एम एस एफ डी एस हॉल हौख्रे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा अयसाई खल कईथरप मयूबद पीरब चैथे थेनब पुनः थौदाब तंगाई फदे गृहमंत्री अमित शाह बेंगोल की भारत बंगलादेश गमखई बीएसएफ की तरानिपानसुब बटालियन बॉर्डर आउटपोस्ट चाको थौरान की प्रोजेक्ट खरन संगागनी खरन उरेब उयुंग तमगनी केंद्र रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी पुणे lupa koti lesing tatru chatre sangna packet kadaba national highway project ahungi urep ayung tamgani pauloi jare
3: adam thorum tabiri ba si akashvani imphal ki kangla channel gini hauje mulan thoksari manglai bak ta aigi irai bak iramdam my dreamland thorum lan thokpiri ba yumnam bablu thorum puthokpi nomthongbam roma tabisi
4: hauje tabiri si nomthongbam roma na puthokpa manglai bak ta aigi irai bak iramdam thorum lan thokpiri ba yumnam bablu

इबीएमआई कोंगबी उदय पर थोमा पाइप को सना संगा इल्लही लुंग ललु हंजे बना आय आय नहीं बुंबा ललु हंजे बा कोंगदो इंतम नहीं मापालंग थोरो हाइडना हाइडक बुंबता हल्गीना मदम उदय बल ललु हंजे बा थोंगनाते गे लाउन हंगदो गे येंगल पमतम दा लालू हंजे बब मगाई पंडी पंगा करिया वाता पिकतो हाय आई ने लाली बच्चते की नतीन ही लुआंग लालू हंजे बब एक इगाई पंडत लंगत लां चिंग नगे हाय बगे पंडी सांग किबिक शिम से हाय बच्चे लालू आई नापलताई हाय नंग जबी थोई मांग बब पांपरा हिंग बब पांपरा करीगुम भां नंग जबी थोई हिंग बब पांडे बतीने नमोम लगन पच्चीस रबी आई नमोम लगन सगेन भी आई खोंगे भी दोल लालू हंज भी इगाई पंद थाज दब यादी पी दब यादी को आई शीरगी कोरो नोमित अमदने नमोम मागी दमक्त ने है ना है निंग है गुरु है यंग है री है यंग है ये है रम ते न ताऊंग है यंग खाई पुरक कनी ये है रम ने है लालू हंजवा मनाइ मचन मयांग को खोंदो इहुल तंकी शोम न खोंदो इहुल तमल कम तम दा इपोगी इबोंग खागी बा ngai shai gi sing ma ti mangal shau kha ba luang laloi hanjabani luang laloi hanjab asina manai ma chat mayam dane haiyang di हेरांग मखन शुना पुगद लेरांग मखन शुना पुगद अपने भज्य खबर ले में सिंग चले भी मयम चनु नंग मयम खिना भज्य वचरी पिछली शर इली हरगा हाइंग खाई पुगद अपने चलो शिम शारु हाइना यो मपाउ तम करे शोम न कम दौरी मोयरांग निंग थो मबतिक शोर मंगा ले खबा थोंगले लन था बशीन मपरी पोइनो उन्ह हाइंगली हरका पारी बगो पोइनो उन्ह हाँ पगियावा तारी पगनक लो हाइन कोली पंथोम पगियावा तार व पारी पोइनो हाँ न हानी पाई बगा पारी न चाब कवि बली करियावा पाउंड बिगड़ हाय इप्पन नंग बुको बढ़िया तेजी न तीन ही हाइंग हाइने को वो कुरुक निबिदशी सगांग निंग थोंग न मनाइ मस्त मयांग मुइरांग इगाई पंद हुई लांसिंग नरक के हाइब की मापाव द पंथों न पाग नाप द तारे सगांग निंग थोंग पारी बुग नहाक हाइंग अच्छे लांसिंग द बयादी कोड नंग लांसिंग द बयादी हाइब गिरी गिरी गिरी तलक मत मशीद पंथों में पागी हकला बयावानी, पौनाऊं ना हागी थमोई द करी खाली हाय, हाय येंग शिनी आई नंगारी इबसे, बीमा मागी मगाई पंद शरी वाचन की बनी, तराचा यों पर उतराचा क्षाबीन शिहाई बने, हाय येंग आई ने बीमा मागी मगाई पंद चलग तराचा क्षाबीन द आई न हुई लंच पतार बनी, इबीमा मागी थमोई द करी खानग देगी हाय द तुम्हें था माई थों थाज लुक था रग ले रग मतम था पंथों में पन हाय परिवंग पनाव ना हा पंथ हाय नंग लांचत पे कीरा बरा नंग लांचत पे कीरा बरो छागांग निंग थोगल लां धिंग ना बकीरा बरो नंग लांचत रा बदी हल्की मतम बुइर बक कबला कुशलवा पंथों ना पाई न छागांग निंग थोगल लां धिंग ना कर पग ये भी मांग बदो पारी नंग यंग बंगा मुदर नि पागी बंगा हाय न हंगले को मतम था पंथों मा पाग हंगले बयावासी था मुझे इरे निंग नुंगशी भी ओय भी महक्ती पामो बो ओय भी महक्ती हाय एक को बो कुरु तुम्हें न तरब शु नो मधि उन्न बयाई पंथों ये पाई पुंगो दी तरक नुंग दो न वांग बरा पंथों ये पाच मावांगी मालिम लेले लुंबरा लोई दाम था चिंतरा नाग पुर्वे पले में इमान ही न मल्ल में हाई बा सिंगों

0: वेस्टर्न म्यूजिक की थोरम ताबीरे।
1: लेप्तन संदोक चरकली बा संगनायरब सिंगी वारी थोरम मसी की सरु अमा वैना ngasi amuk puduna lakjari Isaac Newton. Isaac Newton, January gi tang mari, lising machatruk nifu humdoida, England gi manor house amada pokhi. Mahaki apokpa mapa, lanthum sampati yamna laijarabasu, larik laisu hairamdi, masagi maming phauba iba hairamdi. Mahaki apokpa laikhidaba, tha ahungi matungda, mahak tha sudana pokhi. Isaac na, सुमनतंगी मसागी चही अनी सुरक्प मतंदा महाकी अपोक्पी ममा अतोप नुपा अमदा अमुक मयुम पानखी। Isaac Newton लारिक लाइसुदा थवाई इयाव याउदना लिसिंग मचात्रुक हुम्फुदा स्कूल तंबलोशिनखी। मथंग चही लिसिंग मचात्रुक हुम्फु माथोईदा महाक त्रिनीति कॉलेज कैम्ब्रिजदा मिंग चनखी। महाकी क्लास मानबा मसुंग ममानबा अयामबदगी महाकना हलमी। मफम सिदगी महाक मैथमेटिक्स ता थवाई याउना औराइब हौरखी। प्लेक लैना संदोरक्तुना कॉलेज थिंगजिन खिबदगी महाक लिसिंग मचात्रुक हुम्फु मंगा दगी लिसिंग मचात्रुक हुम्फु तरुक की था खरदी मयुमद लैखी। तपना तपना न्यूटन गे है सिंग बसिंग मथंग मथंग उथोक हौरखी। मैथमेटिक्स अमदी साइंस की ओइबा थियोरेम कया सेमगतुना डिफरेंशियल अमदी इंटीग्रल कैलकुलस की युम्फम थोनखी। महाक लिसिंग मचात्रुक हुम्फु निपानदा मास्टर्स डिग्री फंखी। प्लेक लैनाना मरम ओइदुना महाकना मयुमद लैरिंगैदा नुमितकी अंगौब मंगाल असी असेंग पोसक अम नत्ती हाइबा वाफम असी चपचाना वारेप लौब ngamखी। महाकना नुमितकी मंगाल परिंग अम प्रिजम अम फाउदुना चलहनब मतमदा मचु सिंगी चुमथांग अम उब फंखी। महाकना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अमसु पुथोखी। लिसिंग मचात्रुक हुम्फुतरा निथोइदा महाकपु रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलो अमा उहेनखी। मंगाल अमदी मचुगी मतांगदा महाकी अहानबा रिसर्च पेपर्सु फोंखी। लिसिंग मचात्रेत चुप्न मरीदा मंगाल अमदी मचुगी मतांगदा महाकी ऑप्टिक्स मियामद फोंखी। महाकना ऑप्टिक्स नुमितकी मंगाल अमदी मसीगी मचुगी मतांगदा पीखिबा लेक्चर कया ममई थंगदा रॉयल सोसाइटी ना मियामद फोंखी। लिसिंग मचात्रुक हुम्फु तरुकता महाकना लेंग ओटपगी मतांगदा लो अहुम पुथोखी। महाकना लिसिंग मचात्रुक हुम्फु तरा हुमदोईदगी लिसिंग मचात्रुक मरफु हुमदोई फाउबदा अलजेब्रा अमदी थियोरी ऑफ इक्वेशन गी मतांगदा वा कया ngangखी। थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन महाकना पुथोखी। मालेमदंगसी फाउबदा पांगथोखिबा विज्ञान की थबक सिंगदगी ख्वाईदगी अथोईब थबक नि हाइना मियाम सिंगथा नरीबा महाक की प्रिंसिपिया महाकना मियामद फोंखी। मसीमकना महाकपु मालेम की फिजिकल साइंटिस्ट सिंगी मनुंगदा ख्वाईदगी अफाउब ओइना मियामना लौनरी। महाकना पुथोकलंबा लॉज ऑफ मोशन अहुम ngasii फाउबदा फिजिक्सदा यामना मरु ओइना तमनरी। महाक की अहानब लोना असुमना हाइरी। पोसक अमदा मापान थोंगदगी साफु अमा पीरुद्रिब मखै पोसक अदुगी हानदगी लैजरकपा लेंगदन लैबगी मओंग नत्रगा चांगनायना लेंगबगी मओंगदा अकाइबा अमत पीबंगमदे। अनिसुबलोना असुमन हाइरी। पोसक अमदा पीरुरिब साफु अदुना पोसक अदुगी लेंगबगी मओंगदा अकाइब थोअलि थोकलीबा अकाइबा अहोंगबा अदु पिसिल्लुरीबा साफु अदुगी माइकैदा इरोइनना थुए। अहुम सुबलोदा एक्शन खुदिंगी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लै। महाकना पुथोकलंबा साइंटिफिक नियम सिंग पुंसिगी खोंथांग खुदिंगदा सिजिननरी। ममैथंगदा लिसिंग मचात्रुक मरफुतरा हुमदोइदा निंसिंगबगी पांगल हनथरकपदगी महाक थिजिन हुमजिनबगी थबकदगी पोथाखी। लिसिंग मचात्रेत चुपना अहुमदगी महाकी पुंसीगी अरोइब मिकुप फाउबा रॉयल सोसाइटी गी प्रेसिडेंट ओइखी। लिसिंग मचात्रेत चुपना मंगादा क्वीन ऑफ एनीना महाकपु नाइट मिंगथोल पीदुना इकाई खुमनब उठखी। महाक मपुंसी चुपा मयुम पानखीदे। लिसिंग मचात्रेत कुन तरेत की मार्च की तांग कुंदा मसागी सही मरफु मरी सुरकपदा महाक नोंगाखी। सर Isaac Newton ना ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯁꯩꯊꯥꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏ꯫
0: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣ ꯄꯍꯤꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ
2: ꯁꯃꯥꯆꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯠ ꯃꯦ ꯀꯅꯛꯂꯇꯥ। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
4: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
5: Congratulations in space for facilitating
3: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
5: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
2: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
6: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
7: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
7: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
2: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
7: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे

0: श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर फौजी भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है। आज फौजी भाइयों की सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फौजी भाइयों, अभी आपने सुना भूल भुलैया 3 से श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार है प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से के एस चित्रा और दलेर मेहंदी के युगल स्वरों में एक गीत। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीतकार है ए आर रहमान।

अभी आप सुन रहे थे प्यार फिल्म से के एस चित्रा और एस पी बालासुब्रमण्यम के युगल स्वरों में एक गीत। गीतकार है मजरूर सुल्तानपुरी और संगीतकार है आनंद मिलिंद।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान के आवाज़ में हीरोपंती फिल्म से एक गीत। शब्द रचना कौसर मुनीर के हैं और सुरों से पिरोया है साजिद वाजिद ने। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अमाल मलिक के आवाज़ में मैं रहूं या ना रहूं फिल्म से एक गीत। गीतकार है रश्मि विराक और संगीतकार है अरमान मलिक। इस गीत के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।

फौज की थोरम ताबिरी ताबिरी बंशी आकाश पानी इम्फाल की कंगा चैनल दगनी हौजिक चैनल से दलांथुक सरी सिंगलोन की सैरोल सैरोल की हान बता लेजरी सिंते लाइसोली सही खंजल दा बी चिंगजालम अमदी महाकी कांगबू ताबिशी

जिंगलों की सैरोल के अरोय बता ताबिरी तारावलाई सोलिसे सैस की बा के लाइंगा ममती महा के कांगू अदम थरम ताबिरी बा से आकाशवाणी इम्फाल के कांगला चैनल लगिनी चैनल से दाहुजी मार पाइटे थादोगी थरम मथंग मथंग ताबिसी।

मतंगदा मुखदल तमजरी सगेन भी तैमा फिल्म पुष्पारानी ने सकई सैयमा सैरेंबा थोक्सोम चंद्र सैरंगना आर के जितेन्द्र

0: इसी चितान जकी बगलोइना फलमे से लाथुक सब लोई जरे आकाशवाणी इम्फाल हाउजी का मुख संदोक सरी मयांग इम्फाल ड्रामाटिक यूनियन के रेडियो लीला लोंथोक तबी लमजिंग भी हरीब लीला सिगे अरुई बसरो
1: टेबल को तो पुथोखरो ने पो छिंदो चना चना हाप चलुको
2: हो तामा
1: मथंग मफम मद सपोर्ट लोग बचक कदब लाइबनी खरा थुजले नोइबो करी नोने ना ना दुलुम न चिंदो पोरे बोरा दबो
2: तामो लाइक ने तामो
1: लाइक खोय खोम तु यंखि असिदि यान फत्रे न सिदि
2: तामो अफा बसो तुम खरा याव रे तामो
1: ओइते मा द थोपिरो
3: आ इबुङा कै दौरे
1: मसीगे लाइसिंग सिटी लौबद नोहाइगद मान्द्रे मखुम तत्वा उचिन चाबा मयंग मुटपसु यान याव रे तेमा
3: इबुङो से सी लाइ रेसिंग सिगि दमकतने इतै मने पैसा का अमा त लौदौ नत्रि इबुङो साइ बद लोरबनि से से पुखरु पुखरु इबुङो किदं थुजलो
1: हो हो इतै न पुखराय बे पुखि बता रे दना पंथौ ओलेस होंगे इनाउ थोइबना अहल मन सिन ब याब पोचै लैरबति पाब याब लैर लैर पिउ हाइबनि होम द पि भाइ बदनि फत फत बसिना मफम चाबा मे हुन्दो लमनगा अफा अफा बदु पि भाइ बदनि हाबचो हाबचो
3: होइनि होइनि इबुङो नोइन थोप दौरो किदं थुजलो इबुङो से से नान थुना पुरो से अदुगो नै बुङा से सिगि चौकि से सिमसो हाख्रो से
1: चौकि सिमगा हाबचोना बतौ से
3: थुजलो
4: ना इमा चौकि बुसे गायिनो सिपु होइनो सिपु पुगिने
3: हैमा अमन मजे खैदौना गे हाइनो
4: सिनि पुपु गेने पुहन गिनो बा पुपु दा हेक सिक्रेसु पुपु मने खै लासा दोइनि इमा सिपु हन गिनो
3: हैमा से सिना तबने इमान ने इजागि फजाबामा सेमग्रबनि से पिथोग्रजि से अमन
4: मजे सिपु हन गिनो इमा सिपु हन गिनो इमा
3: हादोन हेमा से पिथोग्रजि ने दैनो मसिपु इमानोइन खंगिने करी तौगदा तौरैदबा कानोद्रबा अमन बपोसिगिदमकता इसाना दुमन तौगदा नतिने
1: इतै माङागि मतौसिनो आइत्रे सक्रि सिमति लैजा हो सुनुदा
3: हेराइ बुङो आङा हाइबा वाबु सेसे पुग्रोसे बुङोसे
1: ओ परा फ्रेतेन पुरानो पुगि बता
4: इमा पुग्र नङ्या फते नमिनु शमियाव गाइसि इमानन
3: यौनेचा हाय नङबो पैसा सङना नहिना सिंग तमोदना खैना बोर्डिंग द थंबसिबु नमाना पाखैके सिंग तक खुमना ब्रो हा आंगांग नंग सि हेयंग सि दने बोर्डिंग द थिंग द सुक या या रोय दबे न न पोंग आ बसि गलेरे दिने साइ गन आ बता रे न ला
4: इमा ओ
3: थला ओ हे न
4: सि बोन नि न
3: न हे सि होने
5: ओ से सिंग जे नोय न होन गरेन तेस तेबल चो कुइ जों तलि मशीन पिसी ओदों यांग रे बोन हाय बग तो बग बाजी लाग करै नो बाय नोज खुम दैसिबो
6: हाय हाय हाय सुछना हाय हाय पुन बालबु पुरै हाय सुछना दि हाय सुछना दि करै चखरा इमुंग गलै ब्रो हाय सना सुछना
5: करै नो बाय खुम दैसिबो
6: करै नो सिसि तोरु मिसि दि मंगले ताइ बंग लाइबो हा करै नो ने सना जाव बा
5: बाजी
6: इम सिदा बाजी नि इजब लारिक सिंग अदुगा अइने पाजब लारिक सिंग अदुगि मथकता सिद थाब टेबल चकुरी दुना कदाय रे चखरा हा कदाय रे लिखबगे हाइबनी
5: बाजिया बाजी नक हक्सांग छोंज लकपा सही नक याम से लकप सिदा बाजी गी कान द्रब मल्लब सन द्रब लेक्सिंग से पारगा बाजी गी हक्सांग छोलक द्र हाइदना कान का पिकब वाई ग वाई सिन मजी द बाजी
6: करी हाइब सना जा वा
5: बाजी
6: मल्ले बच्चे नेत्र ब वाई सिन ल ब काले द्र ब हाइ ब को हाय हौ कि ब तो गो कया दु बुनी ने इतिहास हारी बसा
5: बाजी
6: नानी हो फम मोरी में इतिहास पुनंग न फम दा वाई सिन ब को सना जा वा
5: बाजी
6: वाई सिन ब को सना जा वा
5: बाजी के तो के हाय हाय ताई ब्र इसी ब पुनंग है बाजी के नम तो ब्र बाजी सो सो तम तम फम दियो
7: इनाव हो इनाव इनाव बुलाइ दब्रो
3: हैमा इजे लाओ कदाय चलु हुनु फमजि लाओ इजे
7: यारे ने कै नो नंग बुना वाना पाउस मा त ता खिद्रे न संग सासु खिद्रे नते नंग बु इसे न ता परफॉर्म ला दु कै त कान द्र भाई बा
3: हैमा इजे मि ता खिनि ए कै दो बे कान रुइ दिनो मिसे नंग बो हो हैमा इजे नंग दि याम ना ना के न लाइ ना कदाय च तुइ नो से बो
7: करि नो गसि सि से तम फाव गि संगा बदुनि नते नंग सला रोय हाय ब्रो
3: मोगी दुमुंगा सिताब्रो
7: होइने
3: हैमा इसे आइ चल्लो रोइ दै जे आइ आंगांग बोडिंग थिनदो बने थाबक याम लैरे इसे चथोक पिरुरो आइ होरेने पुइयें ओइन आइ पिरुर गेजे
7: ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ
8: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦ
7: ꯏꯆꯦ ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ
8: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦ
7: ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯏꯆꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯂꯩꯋꯥꯗꯣ ꯀꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯠꯂꯦ
3: ꯀꯥꯎꯗꯦ ꯀꯥꯎꯗꯦ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯖꯍꯧꯔꯒꯦꯀꯣ
8: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ
3: ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯣꯡ ꯃꯇꯅꯦ ꯀꯦꯗꯅ ꯃꯧꯗꯅꯅꯦ ꯃꯤꯅꯛ ꯇꯤꯟꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯐꯪꯒꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯕꯩꯁꯦ
9: ꯄꯨꯄꯨ ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯇꯪ ꯐꯝꯃꯨꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗꯕꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯄꯨꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒ ꯕꯕꯥꯒꯁꯦ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ
10: ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ
9: ꯕꯣꯕꯣꯡꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯆꯥꯛꯀ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯕꯜꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯄꯨꯅ ꯏꯖꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯄꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦꯀꯣ
10: ꯄꯨꯄꯨ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯗꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯄꯨꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯄꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕꯗꯤꯅꯦ ꯍꯥꯡꯂꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯄꯨꯅ ꯏꯗꯣꯝ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ ꯍꯩ
9: ꯄꯨꯄꯨ ꯋꯥꯒꯅꯨꯑꯣ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯄꯨꯄꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯅꯤ
10: ꯄꯨꯄꯨꯒꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯄꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯤꯡꯉꯝꯂꯨꯒꯅꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯄꯨꯄꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯦꯀꯣ ꯄꯨꯄꯨꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯄꯨꯄꯨꯒꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯈꯜꯂꯕꯗꯤꯅꯦ ꯏꯁꯨꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯒꯅꯤ
9: ꯄꯨꯄꯨ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯤꯌꯦ ꯄꯨꯄꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯏꯟꯒꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯇꯧꯏꯕ ꯄꯨꯄꯨ
10: ꯍꯧꯒꯠꯂꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯣ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯤꯅꯤ ꯏꯁꯨꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯇꯥꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯅꯪ ꯄꯨꯄꯨꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ ꯅꯪ ꯉꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯨꯔꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ
9: ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯄꯨ
10: ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯨ ꯁꯔꯥꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗꯪꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯉꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯃꯛꯅ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯑꯅꯦꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯅꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯨꯒ ꯑꯩꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯜ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯊꯠꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤꯗꯀꯣ
5: ꯕꯖꯤꯌꯥ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ
10: ꯏꯄꯥ ꯀꯔꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤꯅꯤꯗ ꯏꯁꯥ
5: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯁꯨ ꯁꯅꯥꯁꯨ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯅꯤꯜꯂꯝꯕ ꯂꯥꯡꯂꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯆꯤꯛ ꯆꯦꯛꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯅꯆꯥꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯏꯆꯥ ꯁꯅꯥꯅ ꯃꯄꯨꯕꯣꯛꯀ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯅꯔꯅꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯍꯧꯕꯁꯨ ꯎꯔꯒ ꯅꯆꯥꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯦꯅꯕ
10: ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯃꯔꯤꯔꯦꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯊꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨ ꯏꯄꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ
5: ꯕꯥꯖꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯝꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯅꯦ ꯕꯥꯖꯤ
10: ꯁꯥꯟꯅꯔꯋꯥ ꯏꯄꯥꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯅꯨꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯤꯈꯤꯕꯕꯨ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ
5: ꯍꯥꯏꯍꯦꯗꯦꯗ ꯕꯥꯖꯤ ꯕꯥꯖꯤ ꯕꯥꯖꯤꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯆꯠꯄ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯅꯃꯨ ꯅꯨꯄꯤꯒꯩꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯕꯥꯖꯤꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯟꯅꯖꯔꯝꯃꯝꯅꯤ ꯕꯥꯖꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯕꯥꯖꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯅꯃꯨꯒꯩꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯕꯥꯖꯤ
10: ꯏꯄꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯏꯄꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕꯤꯕꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯏꯄꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕ
5: ꯕꯥꯖꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯑꯄꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯁꯥ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯕꯥꯖꯤ ꯅꯃꯨꯅꯁꯨ ꯕꯥꯖꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤꯗ ꯕꯥꯖꯤ
10: ꯑꯩ ꯏꯃꯧ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯗꯝꯅꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯆꯪꯈꯣꯠꯄꯤ ꯏꯃꯧꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯁꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕ
5: ꯍꯣꯏ ꯕꯥꯖꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯤꯅꯦ ꯕꯥꯖꯤ
10: ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯏꯃꯧꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯤꯅꯤ ꯃꯥꯃꯛꯅ ꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯗꯣ ꯍꯥ
5: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯕꯥꯖꯤ ꯕꯥꯖꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅ ꯄꯨꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯨꯒꯦ ꯕꯥꯖꯤ
10: ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕ ꯊꯣꯡ ꯊꯣꯡꯅ ꯍꯥꯎ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯄꯟꯗꯨꯞ ꯑꯃ ꯇꯥꯒꯗꯕꯒꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯥꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯨꯄꯛ ꯇꯨꯄꯛ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯐꯛꯂꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯗꯨꯅ kuang bakun pik lembaga sinin kibada ai. Ada buah sedih. Nak koi nai muhang lembah lembang amat kerigi nai tu muduk tu nai tambi amli baru.
9: Pupu, pupu. Ada tak kau dengar no? Ay boarding jatori ana like room lira.
10: Hoi ni hey, suhdi singun ini hek tak kangi. Nang kari kari budab sing loi nak cithad reko kari kari kauri hayu.
9: Ama kauri.
10: Kari kauri ge kari cithad ge, apa hayu ni puda.
9: Kaim tak kau deh ba. Selam dai dene, pupu nama nam nam topi bedo, adu kauri hay ba.
10: Lolo, suhdi nak kok pahu cikkanu boarding da. Tawa yang nu hone kata bni, nahi itu puning cang kata bni kau, kata kata isu ikut tu kara.
5: Cepat cepat. Bima, lalu cepat.
9: Bubu nang kau kanu kau.
10: Cepat cepat.

ताबिरे मयांग इंफाल ड्रामाटिक यूनियन की रेडियो लीला लोनथोक तबी लमजिंगी हायरिब लीला सिगे अरुबसरु आकाशवाणी इंफाल हौजिगमु संदोक सरी नाहरोल की खोंजेल।

कुदल यहाँ बोइन लखसरी सैना फ्रेम चिदा पुष्परानी हुइद्रुम लसकपा दालोम गुरुमेमना सेरेंबा दीप सिनामना सैरांगुई से इसे इसीबु खनबिरकली बना लेमा पोपम अवांग दगी नांतुई नांबी अमदी रोजिता

मतंगा मुख खुदल तमजरी साफो फिल्म सुस्मिता अमदी सुरेन अनि पुनः सबिनबा तोमबिराज ना सेरिंगबा सोरी सेंजमना सेरंग विषय इसै यसिबु खनबिरक्लीबना तोपमेयालेकाइदगी तिलोतमा थोपम नंगसुप सेंजेनबमदगी रोनाल हेंथोइबा मदी तमा आर बी एकादमी लमसांगदगी सार कर्नजीत मैडम गाइलू रनिता जेनिता मदी नंदा

0: ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ, ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟꯅ SMS ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯕꯣꯕꯣ ꯕꯕꯥꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ, ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ SMS ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12:30 ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 2026 ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯤꯝ ꯋꯦ ꯃꯤꯇꯔ 0.1 kHz ꯅꯤꯄꯥꯟ 40 ꯅꯤꯊꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅꯖꯔꯤ, ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ, ꯖꯥꯏ ꯍꯤꯟꯗ꯫
1: अधूरेपन की टीस लिए हुए दिल में सबके लिए जगह है और कई बार ये समेट लेता है बहुत कुछ अपने भीतर, बस दिल में। 10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास।

कहते हैं कि हर इंसान के पास एक सपना होता है, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ कैलेंडर बदलने के साथ बस यादों में या कागजों में दब जाते हैं। मगर अधूरे ख्वाब अक्सर सबसे ज्यादा दिल में जिंदा रहते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया देखने के लिए सफर करते हैं और कुछ लोग किताबों के जरिए दुनिया को जानते हैं। हर अच्छी किताब पढ़ने के बाद लगता है जैसे दिल में एक नई खिड़की खुल गई हो।

जिसने जिंदगी में बहुत से सफर तय किए होते हैं उसे पता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत मंजर भी कुछ दिन बाद तस्वीर बन जाते हैं, यादों की स्लेट में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो बात हमेशा जिंदा रहती है वो उन कच्चे पक्के रास्तों का एहसास है जो रहता है दिल में। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास।

कहते हैं कि दुनिया घूम लेना आसान है, मुश्किल ये समझना है कि आखिर लौटना कहाँ है। हर मुसाफिर के दिल में एक ऐसी जगह होती है जिसे वो घर कहता है। वैसे घड़ी बता रही है कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं और सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444-2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह हम आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे आप हमें कॉल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे श्रोताओं बस इसका ख्याल करना है आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार प्राची नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: The benchmark domestic indices register modest weekly gains. US markets wrap up week on negative note. And global crude oil prices jump around 16% this week amid geopolitical concerns.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह मामूली बढ़त दर्ज की गई अमरीकी शेयर बाजार इस सप्ताह घाटे में बंद हुए और भू राजनीतिक चिंताओं के बीच इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं आइए अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह किस तरीके से हमारे घरेलू शेयर सूचकांकों ने प्रदर्शन किया इस सप्ताह घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त देखी गई बड़ी कंपनियों के उम्मीद से बेहतर परिणामों के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद बाजार में जबरदस्त खरीदारी हुई इस हफ्ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.7% बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 24,334 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार का प्रदर्शन प्रमुख शेयर सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा इस सप्ताह मिड कैप 100 सूचकांक 1% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.6% नीचे आए अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह ₹96 कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में ₹96.28 पर बंद हुआ जितेंद्र जुड़ रहे हैं श्रोताओं हमारे साथ जयपुर से बहुत अभिनंदन
3: मैडम
1: सवाल पूछिए
3: हाँ सर ये मैं किसी के बिहाफ से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो निफ्टी 50 या 100 तक भी पकड़ लीजिए मैं बोला पूछ के ही बता दूंगा कि वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेस करना चाह रहा शेयर उसका डीमेट अकाउंट है तो कौन सा सेक्टर जैसे वो अभी स्टार्ट करें इंस्टॉलमेंट लेने के लिए 50 तक भी चलेगा निफ्टी 50 100
2: अच्छा जितेंद्र जी का शायद मतलब इंस्टॉलमेंट से एसआईपी फॉर्मेट है आप स्टैगर्ड इसको परचेस कहते हैं मुझे लगा जितेंद्र जी देखिए पहली बात तो कंपनी की चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए सेक्टर बताने से पहले मैं आपको ये सावधान करना चाहूंगा क्योंकि अच्छे सेक्टर में भी बैड फिशेस होती हैं उसमें ऐसे कंपनीज आ जाती हैं तो चार पांच सेक्टर्स का मैं नाम ले लेता हूं आप उसको ध्यान में रखिए डिफेंस को ध्यान में रखिए एफएमसीजी को ध्यान में रखिए और आप ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनीज ऑटोमोबाइल कंपनी ज्यादा बना रहे हैं आप उनको ध्यान में रख सकते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े जो शेयर्स हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं उन पे आप ध्यान रख सकते हैं चार पांच सेक्टर्स हैं पर मैं दोहराता हूं कि कंपनी का जो चयन है वो बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पूरी तरह से स्टडी करने चाहिए उनका प्रॉफिट उनका ऑर्डर बुक उनके प्रमोटर्स कैसे हैं उनमें कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है उनका भविष्य कैसा है ये सब चीजें देख के तब आपके आपके फ्रेंड जिनके बिहाफ पे आप पूछ रहे हैं आप उनको सारी बातें बताइएगा कोई बात मिस मत करिएगा वरना संदेश अधूरा रह जाएगा
0: Our next caller is V.R. Nath from Delhi. Mr. Nath.
4: जी
0: जी सर जी सवाल पूछा आपने.
4: हेलो
0: जी
4: मुझे पूछना यह है कि जो शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं
0: जी.
4: तो उसका जो प्राइस सेल प्राइस और जो ब्रोकरेज और स्टैम्प मीडिया वगैरह जो होती है अबाउट 1% को कहाँ दिखाया जाए.
2: कहाँ दिखाया जाए आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वी आर नाथ जी जानते हैं जानना चाहते हैं. मुझे नहीं पता कहाँ दिखा क्योंकि जब आप इनकी अकाउंटिंग करते हैं अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं क्योंकि होता क्या है प्राची और निशित के जब जो लोग इसमें रेगुलर सेल परचेज करते हैं तो वो कैपिटल गेन की जगह बिजनेस इनकम होता है उसको हम कहते हैं होल्डिंग शेयर्स इन स्टॉक एंड ट्रेड. तो अगर ऐसा होता है तो उसमें अलग से एक खाता खोला जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी दिखाई जाती है. बाकी ये आपके शेयर्स की प्राइस का हिस्सा ही बनता है अगर आप इसको आयकर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं क्योंकि आयकर की डेट चल रही है. मैं गेस कर रहा हूं कि शायद नाथ साहब वो पूछना चाह रहे हो तो इसको आप अपनी परचेज प्राइस में से ऐड करके या सेल में से घटा के आप अपना नेट कैपिटल गेन निकाल सकते हैं.
1: दिल्ली से हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं. राजीव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी. ये जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 50% आईटी सेक्टर में लगा रखा है तो इस महीने रुकना चाहिए कि सेल कर दूं सर कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट है.
2: राजीव जी का बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आईटी सेक्टर निरंतर चर्चा में प्राची और निश्चित बना हुआ है. आप देख ही रहे हैं कभी उतार कभी चढ़ाव कभी एआई से खतरा कभी लेऑफ्स का खतरा कभी अमेरिका में मंदी का खतरा कभी दुनिया में मंदी का खतरा. बहुत रोलर कोस्टर राइड आईटी सेक्टर की आ रही है. तो राजीव जी मैं सलाह दूंगा आपका जो विचार है अच्छा है. अगर आप अभी मुनाफे में है तो बुरा विचार नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें और प्रॉफिट बुक करके और इसको नए सिरे से आप कुछ और सेक्टर्स का भी चयन कर सकते हैं. आईटी सेक्टर में तो लगा ही सकते हैं पर मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का नाम लिया. एफएमसीजी है डिफेंस है रिन्यूएबल एनर्जी है ऑटोमोबाइल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोकस्ड है उन पे लगा सकते हैं. तो आप इसको बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए राजीव. ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा. तो आपने काफी बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में लगा रखा और अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है और ऐसे माहौल में प्रॉफिट है तो मुझे लग रहा है ये बुरा आइडिया नहीं होगा. आप प्रॉफिट उस पर बुक करके और नए सिरे से मार्केट में जब जब करेक्शन आए स्टैगर्ड फॉर्म में जिसको हम एसआईपी कहते हैं एसआईपी मतलब सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान उस तरीके से इसको लगाएं.
0: नेक्स्ट कॉलर इज अमित झा फ्रॉम दिल्ली. अमित
6: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
6: सभी को. नमस्कार सर कोहली सर. सर प्रश्न मेरा मिलता जुलता ये सारे श्रोताओं ने पूछ लिया लेकिन थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ सर
0: जी.
6: कि जैसे आपने कहा कि सेक्टर की कंपनी आपको देखना चाहिए उनके फंडामेंटल क्या है उनके ऑर्डर्स बुक क्या है उनके पोर्टफोलियो सॉरी कैश फ्लो क्या है जो भी है अच्छा होती है. तो सर मैंने तो अभी रिसेंटली 2 सालों में देखा है कि एक आईटी की आप चर्चा कर ही रहे हो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सारे कुछ ठीक थे फंडामेंटल भी ठीक थे मैनेजमेंट भी ठीक था बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनी नाम नहीं लूंगा जैसे आप कार्यक्रम नहीं लेना होता सेक्टर की बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है टॉप लीडर कंपनी सर. और अचानक से उसमें ऐसी कोई न्यूज आ जाती है और स्टॉक एकदम से गिरने लगता है सर और 30-40% टूट जाती है तो अब उस दौरान हम कौन सा फंडामेंटल देखें. धन्यवाद सर.
2: बहुत अच्छा सवाल अमित ने किया है निश्चित प्राची क्योंकि ये अक्सर निवेशकों को ये रहता है कि हमने सब फंडामेंटल्स चेक किए सब कुछ अच्छा था ऑर्डर बुक अच्छी थी बॉटम लाइंस अच्छी थी टॉप लाइंस. अब देखिए न्यूज पर तो अमित किसी का कंट्रोल नहीं है.
1: बिल्कुल.
2: अगर कोई ऐसी खबर कंपनी से कोई ऐसी खबर निकल के आती है उनके बारे में कोई आक्षेप हो जाता है कोई उनके मैनेजमेंट से संबंधित कई बार कोई खामी निकल आती है इस पर तो देखिए किसी तो देखिए शेयर मार्केट में जो निवेश होता है अमित उसमें जोखिम तो भरा होता है ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ी. यही जोखिम होते हैं कि आपने सब कुछ देखा फिर भी 30-40% पर अगर कोई खबर बहुत बुरी नहीं थी अमित तो वो रिकवर भी कर जाता है. मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा. बहुत ही बुरी खबर आ गई क्योंकि हम अब देखिए स्पेसिफिक्स तो डिस्कस करते नहीं है या तो मुझे कंपनी का हम नाम लेते होते तो हम देखते क्या खबर आई है क्यों करेक्शन आई तो ये सब हम नहीं करते. तो आपको मैं जनरल तौर पर बता देता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो शेयर मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि वो भुलाती भी बहुत जल्दी है वो शॉर्ट मेमोरी होती है भुला के आगे चल पड़ते हैं. देखिए ना पिछले सालों में कितनी घटनाएं घटी आज आपको याद भी नहीं होंगी. तो इसलिए अगर कोई बड़ी चीज नहीं है तो आप घबराए नहीं पैनिक ना करें वो रिकवर कर जाएगा. और ये जोखिम तो आपको साथ में हमेशा ही रहेगा क्योंकि खबरों पे हम इस समय एक खबर के प्लेटफॉर्म पे हैं आकाशवाणी पर हैं यहां से खबरों की ज्यादा चर्चा होती है. तो हमसे अच्छा मुझे लगता है हमारे जो माननीय एंकर इनसे अच्छा कौन बता सकता है कि खबर कब क्या आ जाए इसको कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता. अमित
0: And moving on to the US markets, major US indices ended lower yesterday and posted weekly losses dragged by technology shares. The Nasdaq Composite Index shed 1.4%, S&P 500 dipped 1%, and the Dow Jones Industrial Average slipped around 0.8%. For the week, the Nasdaq slid 2.9%, the S&P 500 declined by 1.6%, while the Dow fell 0.9%.
1: Aur Kolkata se hamare saath Animesh jud rahe hain. Animesh ji, karyakram mein aapka abhinandan. कृपया अपना सवाल
7: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र
1: गुड इवनिंग
7: दिस अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता
2: यस अनिमेश
7: सर आई एम सुपर एनुएटेड मैन शुड आई गो इन फॉर एनी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड फॉर पेंशन स्कीम वुड इट बी रिस्क फ्री और आई शुड फॉलो द जनरल रूल एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थैंक यू सर
2: Animesh, I think the best way for you should be that since you're retired and, you know, generally at the age of retirement, we do not recommend being very adventurous with your investments, you know. So you should not be going very aggressive. So investing directly in stock markets, unless you have complete knowledge and you are very, very research based or you are under guidance of a SEBI registered finance professional, then maybe yes. But otherwise, if you use your own judgments and you've got limited time at hand, limited aptitude at hand, then I would suggest you take the mutual fund route. Mm-hmm. And incidentally, on Sundays, Akashwani and this very show, Market Mantra, a mutual fund expert comes, which guides you on, you know, what kind of investments and what's the duration of investment.
1: Bilkul.
2: So direct market depends on how much access you have to the things I mentioned. But mutual funds, yes, you can try because there you can exit anytime. Mm-hmm. And you can keep a watch on how the fund has been performing.
0: Right. And ICICI Bank today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The bank's standalone net profit rose around 16% to 14,804.5 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 12.7% to 24,384 crore rupees. The ICICI Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 0.35% on an annual basis.
1: एक्सिस बैंक ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने वित्तीय परिणाम साझा किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर लगभग 23% बढ़कर 7,114 करोड़ रुपए हो गया है। इस तिमाही के लिए बैंक की शुद्ध ब्याज आय 8% से बढ़कर 14,646 करोड़ रुपए हो गई है। एक्सिस बैंक का कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात वार्षिक आधार पर 6 आधार अंक लुढ़ककर 0.39% रह गया है और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं केशव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए केशव जी आप हमें सुन पा रहे हैं

0: नमस्कार जी,
1: नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए।
0: शरद जी को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अभी जो विश्व में तेल की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम हिंदुस्तान में टू व्हीलर अगर बैटरी वाला लेने जाते हैं तो टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका कितना प्रभाव हो रहा है? और सुनने में ये भी आया कि चाइना की तरफ से जो बैटरियां बनती थी तो बैटरियां उन्होंने कंट्रोल कर दी हैं और पाबंदी लगा दी है, और आने वाले टाइम में क्या ये बैटरी वाली गाड़ियों में भी क्या प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं? इसके लिए आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे?
2: नहीं केशव, बैटरी में आगे इतनी प्रॉब्लम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भारत में भी अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो छोटी छोटी कंपनीज भी अब टू व्हीलर्स बना रही हैं। हम लोग इस समय दिल्ली NCR में बैठे हैं, नोएडा में मेरी जानकारी में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स अब टू व्हीलर्स के खुल रहे हैं। तो ये लोग लिथियम बैटरीज हम लोग वैसे तो हम चाइना से भी मंगाते हैं, पर अब भारत में भी इस पे बहुत काम चल रहा है। मुझे लगता है भविष्य का जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर होने वाला है वो बैटरी ओरिएंटेड होने वाला है, और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल और क्रूड को लेके अभी चिंताएं हैं दुनिया में, जो परिस्थिति है, नहीं मुझे नहीं लगता है केशव के आने, बल्कि आने वाले समय में अभी जो दिक्कतें हैं वो उल्टा रिजॉल्व हो जाएंगी, वो उनका निस्तारण हो जाएगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जो बैटरी के स्कूटर या कार लेना चाहते हैं आप ले, अब तो सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। आप अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार तो उस पर इंसेंटिव भी दे रही है, टू व्हीलर्स पे भी है, कारों पर भी। आप पुरानी कार लेकर आते हैं उसको आप डिस्कार्ड करते हैं तो उस पर भी इंसेंटिव है। तो ये आपको जो आ रही है वो टेम्परेरी होगी, तो मुझे लग रहा है आगे आपको ये नहीं आएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है।
3: Right, and our next caller is Gopal from Mumbai. Gopal. Gopal, can you hear us? All right. In the meanwhile, HDFC Bank as well today reported its financial results for Q1 FY27. The bank's standalone net profit rose 5% to around 19,060 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 6.7% to 33,530 crore rupees. HDFC Bank's net non-performing asset ratio fell by 6 basis points to 0.41% on an annual basis.
1: और संजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सभी जनों को, मेरे तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम 1 लाख रुपए का शेयर लेते हैं और उसे 1,20,000 में बेचते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा या फिर 1 लाख पे लगेगा पूरे 1.25 लाख पे?
2: संजीव, अगर आप मात्र 1 लाख का खरीदते हैं और 1,20,000 का बेच देते हैं तो आपको मैं बता दूं कि 1,25,000 तक की इनकम टैक्स में इक्विटी शेयर्स बेचने पर एक एग्जेम्पशन है, एक विशेष छूट दी हुई है। तो अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर पूछ रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि टैक्स तो खाली 20,000 पर लगेगा, और अगर आपने शॉर्ट टर्म बेचा है, लॉन्ग टर्म बेचा है तो 12.5% लगेगा, आपने शॉर्ट टर्म बेचा है तो उस पर 20% लगेगा। परंतु अगर खाली एक ही ट्रांजैक्शन आपका है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो 1,25,000 तक, जब तक आपका ये पूरा मुनाफा, ये सेल नहीं, पूरा मुनाफा आपका 1,25,000 तक का इसमें से माफ होता है। तो अगर आपकी खाली ट्रांजैक्शन है तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके 20,000 पे 0 टैक्स लगेगा। देखिए, मैंने एक कदम और आगे बढ़ा के आपको बता दिया। जी,
3: एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रोज अराउंड 26% ऑन एन एनुअल बेसिस टू 4,123 करोड़ रुपीज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल। द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम for the quarter grew by 9% to 7,928 crore rupees. Kotak Mahindra Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 0.27% on an annual basis.
1: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कल मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का परिणाम जारी किया है। कंपनी की आय सालाना आधार पर 25% से अधिक बढ़कर करीब 3,11,850 करोड़ रुपया हो गई है। हर तिमाही के नतीजों के आधार पर ये आय 4.3% बढ़ी है। कंपनी का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 22.4% से घटकर 20,946 करोड़ रुपया रह गया है। और गोपाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्कार मंदर टीम को।
1: नमस्कार,
5: मेरे दो सवाल है। ये जो RBI ने इंटरेस्ट नहीं बढ़ाई, क्या उसकी मजबूरी थी क्या? जबकि महंगाई तो कमर तोड़ गई है, फूड इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है, उसकी मजबूरी थी? पहला सवाल ये है नहीं बढ़ाने का इंटरेस्ट। दूसरा सवाल ये है, फ्राइडे को आप देखिए इंडेक्स चली इतनी 1000 पॉइंट BSE और 275 NSE, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 3000 डिक्लाइन था 1000 एडवांस,

0: पिछले दो साल से इक्विटी मार्केट की बहुत हालत खराब है, कई इक्विटीज तो वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं, तो ये इसके इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एलसीबी जिम्मेदार है, बीएसई एनएसई जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है या प्रमोटर जिम्मेदार है? हालत
1: गोपाल जी, आपका पहला सवाल आरबीआई रिपो रेट और इन्फ्लेशन से संबंधित है। अभी इन्फ्लेशन देखिए, आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है वो 2% से 6% का होता है, तो अभी जो सीपीआई के नंबर्स आए वो 4.38 के आए। अगर लगातार महंगाई सीपीआई जिसको हम कहते हैं वो लगातार ऊपर बनी रहती है तो फिर आरबीआई कहीं इसको हम हॉकिश स्टैंस कहते हैं, आरबीआई अपना हॉकिश स्टैंस लेगा। पर अभी देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है गोपाल जी, आपको ध्यान रखना होगा कि वो जीडीपी की रफ्तार को लगाम देता है, तो आरबीआई जब तक नहीं बढ़ाता जब तक उसको पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यकीन नहीं हो जाता कि अब महंगाई को वाकई रोकना है। तो अगर ये लगातार आगे बढ़ता रहा तो आरबीआई को हो सकता है आरबीआई इस पर आगने वाली एमपीसीज में कॉल ले। दूसरा, आपने पूछा एडवांस डिक्लाइन, ये दो साल से हुआ हुआ है, ना एनएससी जिम्मेवार है, ना बीएससी जिम्मेवार है, ना भारत सरकार जिम्मेवार है, ना सेबी जिम्मेवार है, ना कंपनी जिम्मेवार है। ये परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। मार्केट देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलता है गोपाल जी, आप भी खरीदते होंगे बेचते होंगे, लोग खरीदते बेचते हैं। अगर बीएससी एनएससी या भारत सरकार जिम्मेवार होने लग जाए तो फिर तो मार्केट को मार्केट नहीं कहेंगे, फिर तो उसको एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म कहेंगे। तो मार्केट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं गोपाल जी, आपने देखा होगा उनके बहुत अच्छे, आप देखिए अभी जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझे बताई उसमें बैंकिंग के आप देखिए क्या रिटर्न उस दिन क्या उछला है। तो मुझे लगता है मार्केट में सेक्टर रोटेशन होती रहती है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ती रहती है, कंपनीज के रिजल्ट्स आते रहते हैं। मैं अगर मार्केट के उठने गिरने के कारण बताऊं तो मुझे पूरा का पूरा मार्केट मंत्रा का आधा घंटा सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने में लग जाएगा जी।
2: आगे बढ़ते हैं और मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग
2: जी।
3: मेरा सवाल है कि अमेरिका और ईरान का वॉर तो अभी कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ है, कभी हॉर्मुज खुली होती है कभी नहीं होती है, तो ऐसे हालत में जो ऑयल कंपनीज है
1: जी,
3: इंडिया में जो है उसका जो ऑयल कंपनीज के शेयर लेना कितना अच्छा रहेगा, वो लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और आईटी सेक्टर में उसका क्या फर्क पड़ सकता है?
1: देखिए, ऑयल कंपनीज के शेयर्स अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कुछ दिन के लिए शायद दूर रहने की सलाह दूं, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव क्रूड की प्राइसेस में आप देख ही रहे हैं बना हुआ है। पिछले कई ऊपर गया, फिर उसके बाद $71-72 आया, फिर $85-86 चल गया। अभी बारबल मंदेप जो सऊदी अरेबिया के पास है उसको कुछ बंद होने की खबरें आ रही हैं, हो सकता है अगर बंद हो जाए तो क्रूड और ऊपर जाए। तो मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप मुझे बहुत सीनियर प्रश्नकर्ता हैं, आप बहुत पुराने वेटरन हैं, तो आपके लिए मुझे लग रहा है ऑयल कंपनी से आप दूर रह सकते हैं। आईटी कंपनीज भी काफी उतार चढ़ाव, अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि आईटी कंपनीज में, पर आईटी कंपनीज में भी आप सिलेक्टेड कंपनीज में जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनका एआई थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जिनके एआई एप्लीकेशंस और एआई टूल्स जिस पे काम कर रहे हैं, जिसकी एआई रिसर्च अच्छी है, उन पर आप सिलेक्टिवली आप उसको चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आईटी सेक्टर ने काफी उतार चढ़ाव दिखाया है, अभी हम थोड़ी देर पहले उसकी काफी डिटेल में रत्नाकर जी चर्चा कर चुके हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज आरपी उपाध्याय फ्रॉम दिल्ली।
5: नमस्कार कोल साहब।
1: नमस्कार उपाध्याय जी।
5: कोल साहब, एक एडवाइस लेनी थी कि मैं 78 सीनियर सिटीजन हूँ, तो अब तक मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता था
1: जी,
5: इस साल 12 लाख के उससे मेरे पे टैक्स नहीं लग रहा, तो मुझे भरना चाहिए या नहीं?
1: अच्छा, देखिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी ने शायद अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ था। अगर 12 लाख की वजह से आपका इनकम एग्जेम्ट हो रहा है, इसको पुराने एक्ट में 87A कहते थे, शायद उपाध्याय जी को वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फिर आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हैं, जैसे अब नए रिजीम में 4 लाख है, पुराने रिजीम में 2.5 लाख है, जिस व्यक्ति की बेसिक एग्जेम्पशन से नीचे की इनकम है उसको भरना जरूरी नहीं है, परंतु अगर इस 87A के रिबेट की वजह से आपकी इनकम कम होती है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, 78 साल के हैं प्राची और निशित, और देखिए अभी भी वो कितने लॉ अवॉइडिंग है, उनको पूरी इस बात की चिंता है कि मेरी भले ही मेरा टैक्स नहीं है पर मुझे रिटर्न भरना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे युवाओं को उपाध्याय जी से सीखना चाहिए।
4: राइट।
2: और दिल्ली से हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हैं और ग्रीन एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं
1: जी,
6: उनमें जैसा कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर की जो कंडीशन रेगुलर बन रही है जिसकी वजह से पावर के क्राइसिस हो रहे हैं
1: जी,
6: तो उस चीज को देखते हुए अभी इसमें जो इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करा जाए तो मतलब एक क्वार्टर रुकने में मतलब क्या प्रॉफिटेबल होंगे वो। और दूसरा है सर, मेरा जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स बैंक हैं उनमें क्या मतलब अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए?
1: देखिए पहले मैं आपके मुकेश जी बाद वाले सवाल का लेता हूं कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अभी हमारे माननीय एंकर्स ने कुछ बैंकों के रिजल्ट्स भी पढ़े और बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर भारत का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप सिलेक्टिव बेसिस पे चाहे सरकारी बैंक हो चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हो आप उनको लंबे वक्त के लिए रख सकते हैं। आपका इनका पहला सवाल था कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के लिए क्या एक क्वार्टर वेट करना चाहिए? मुझे लगता है मुकेश के अगर अच्छी कंपनी आपको मिल रही है ग्रीन एनर्जी में तो उसमें जितनी जल्दी आप उस बस में सवार हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे वक्त के लिए यही फ्यूचर है। जैसा आप बात कर रहे हैं अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, अदरवाइज भी फॉसिल फ्यूल से हटके दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर आपके पास फंड्स हैं और आप पूरी रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी भी ले लेंगे, परंतु कंपनी का चयन जो है वो बहुत ही चिंतन करके होना चाहिए।
2: बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए।
7: हाँ नमस्कार कोहली जी।
1: नमस्कार संतोष जी।
7: हाँ मैं आपका फैन हूँ, मैं दिल्ली आपकी वीडियो भी देखता हूँ।
1: प्लेजर सर।
7: मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि मार्केट में इस साल में कैसा रहेगा, दिसंबर तक मार्केट कैसा रहेगा निफ्टी?
1: चलिए संतोष जी, गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है इस समय गोल्ड $4,000 के आसपास है, भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1,40,000 से 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच में घूम रहा है। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मैं ये निश्चित और प्राची को भी जानकारी उनके लिए भी शायद सबके लिए काम की है, तो कि HSBC है, मॉर्गन स्टैनली है, JP, जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज जो इसको ट्रैक करती हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उन सबका कहना यह है कि वो सोना लंबे वक्त के लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है, परंतु शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये जो क्राइसिस चल रही है, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स है, इनकी वजह से उतार चढ़ाव जो आपको लगातार देख हो सकता है यहां से और नीचे भी जाए, तो इसलिए लोगों को सलाह ये, शायद मैं होता तो ये करता कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जब जब करेक्शन आती तो लेती। बाकी निवेश की सलाह तो जैसे हम शुरू में हमारे माननीय एंकर पढ़ते हैं कि आपको किसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से पूछना चाहिए, हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट आपने पूछा कैसी रहेगी, मार्केट इज एनीबडीज गेस, युद्ध पे नजर रखते हैं। देखिए सारी नजर गड़ा के रखिए वेस्ट एशिया पे, वहां से जो खबरें आती हैं उसके आधार पर मार्केट ऐसे नाच रही है जैसे सपेरे के आगे जो है बीन बजाता है तो सांप नाचता है, इस तरीके से नाच रही है जी।
4: राइट, एंड इंडिया'स फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अंडर मिशन Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Sharaji, how do you see this? This is a really remarkable, you know, an achievement.
1: Well, this is indeed a big leap for the Indian space tech industry, because private startups, we've been talking for a very long time. And I think a private rocket being launched in India for the first time, I think this is a huge achievement, I would say. And this is very close to our Prime Minister's heart as well, because he wanted these space startups to come, which was so far been the domain of the government. A big, I would say, very, very laudable effort.
4: Right. And moving on to oil, the global crude oil prices rose around 16% this week. The surge was driven by an escalation in fighting between the US and Iran as both sides traded retaliatory strikes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged 15.9% to settle at $88.10 per barrel. West Texas Intermediate crude August futures jumped 15.5% to end at $82.49 per barrel. And meanwhile, we are joined in by Satish from Delhi. Satish, jaldi sawal puchein.
8: Sir, my question is, in this new tax regime, after 12 lakhs threshold limit, this housing loan interest and housing loan installment is not deductible. like old one.
1: Yes, Satish ji, both are not deductible because new tax regime has been made in a manner where deductions have been done away with. So the Section 24 deduction, which used to be there for interest, and under Section 80C for principal repayment, unfortunately, in the new regime, they are both not eligible. But new regime otherwise is very attractive, which I'm sure you must be ending up with lesser tax because of new regime. I would say

0: there, you should try calculating with both the regimes, and whichever is beneficial, you can choose that.
1: Sharad ji, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: Thank you so much, Prachi. Thank you so much, Nishit.
2: Thank you so very much, Sharad ji. And before we close, here is a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices register modest weekly gains. U.S. markets wrap up week on a negative note. And global crude oil prices jump around 16% this week amid geopolitical concerns. And that's all we have in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

ग्यारह बजकर 41 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए आप, स्वागत है आप सबका एक बार फिर प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में। आपके साथ मैं विकास।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और इस आखिरी गीत के साथ मुझे यानी विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचान नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राद रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसद के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। जाने माने उद्योगपति रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पुस्तक लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव इम्पॉसिबल की एक प्रति भी भेंट की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अनाउंसिंग द अवार्ड्स यस्टरडे इन न्यू दिल्ली, चेयरमैन ऑफ जूरी फीचर फिल्म जयराज सेड मामूटी एंड कार्तिक आर्यन हैव वन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन बेस्ट एक्टर कैटेगरी फॉर देयर मूवीज ब्रह्मयुगम एंड चंदू चैंपियन। ही सेड यामी गौतम विल बी गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन द फिल्म आर्टिकल 370। चेयरमैन ऑफ जूरी नॉन फीचर फिल्म Asim Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastava. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India. Mr. Birla also gave his approval to the merger of six Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. With the merger of the six MPs, the strength of the Shiv Sena has gone up to 13 from 7 in the lower house of parliament. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During this session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In Gujarat, five people were killed and several others injured yesterday after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing processing unit on the Gramol Gatrad Road in Ahmedabad. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed deep grief over the loss of lives in the fire and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Our correspondent reports that the fire has been brought under control. Union Home Minister Amit Shah has extended condolences over the tragic accident at a firecracker factory in Ahmedabad. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker results portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, CBSE had introduced 2 board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. CBSE said that overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. 8 people were killed and more than 60 others injured in overnight Ukrainian drone attacks on Russia. Russian officials yesterday said 2 sprawling warehouses of Russia's major online retailer were hit by Ukrainian drones overnight, one in the town of Kutovsk in the Tambov region and another in Elektrostal near Moscow. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third place playoff match at the Miami Stadium today. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. France's World Cup campaign came to an end after a semi-final defeat against Spain. England, on the other hand, will aim to secure its best World Cup finish since lifting the trophy 60 years ago. The team suffered a 2-1 defeat to defending champions Argentina in the semi-finals. The third-place playoff match has been part of the World Cup

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। इसमें जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसका नाम है पहचान तो थी पहचाना नहीं और इसे लिखा है रश्मि रविजा ने। तो आइए सुनते हैं कहानी पहचान।

सुपरमार्केट के दरवाजे से ढेरों सामान से भरी ट्रॉली लेकर अंजू बाहर आ गई। जरा सा उसका ध्यान बटा और पता चला सामान सही ट्रॉली में गिर गई वो। अब वो क्या करे, बेटी के स्कूल से आने का समय हो रहा था और रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। घर उसका ज्यादा दूर नहीं था पर सामान बहुत ज्यादा खरीद लिया था।

सड़क के किनारे ट्रॉली लगाए खड़ी थी वो, और सड़क पर से सारे रिक्शा नदारद थे। इक्का दुक्का कार जैसे मुंह चढ़ाती हुई सर से निकल जाती और वो बेबस ही देखती रह जाती। अब रिक्शे के इंतजार में कब तक खड़ी रहेगी वो? घर का दरवाजा बंद देखकर उसकी बेटी रूही परेशान हो जाएगी। ये सोचकर अंजू ने जल्दी जल्दी ट्रॉली से सामान का थैला भरना शुरू कर दिया और भारी थैला उठाए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए चली जा रही थी। माथे से पसीना बहने लगा, पर इतनी मोहलत नहीं थी कि सामान नीचे रखकर रुमाल से चेहरा भी पोंछ ले।

0: हांफते हुए बढ़ी चली जा रही थी कि सिल्वर कलर की एक लंबी सी कार बिल्कुल उसके पास से गुजरी। वो थोड़ा चौंक कर किनारे खड़ी हो गई, पर कार उससे थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई और कार की खिड़की से खूबसूरत सा चेहरा झांकने लगा। तुरंत ही उसे अंजू नाम की एक पुकार सुनाई दी। ये कैसा संयोग है, जरूर कोई पीछे से और महिला आ रही होगी, उसका भी नाम अंजू ही तो हो सकता है। वो असमंजस में इधर उधर देखती रही और आगे बढ़ती रही। कार के पास पहुंची ही थी कि वो खूबसूरत चेहरा कार से उतरकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया और फिर से उत्साह भरी वही आवाज आई।
1: अरे अरे अंजू, तुम अंजू ही हो ना? पहचान रही हो मुझे?
0: आप सॉरी,
1: मैं नमिता, मुझे कैसे भूल गई?
0: नमिता, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो।
1: कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, और देखो मैंने तुम्हें झट से पहचान लिया, और मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे भूल गई?
0: अरे इतनी बढ़िया कार से तुम उतरी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस सिल्वर कार मेरे लिए रुकी है, तो मैं थोड़ा हैरान सी हो गई सच कहूँ तो।
1: अच्छा ये बताओ, कितने सालों से हो इस शहर में?
0: बहुत सालों से, जानती हो मैं तो शादी होकर सीधा यहीं आ गई थी। और तुम?
1: अरे मैं भी लगभग तब से ही यहाँ हूँ।
0: और आज मिल रहे हैं दोनों, देखो।
1: बताओ आज मिल रहे हैं?
0: नमिता और अंजू एक ही स्कूल में पढ़ती थी, पक्की सहेलियां थी, साथ बैठना, लंच करना, एक दूसरे के घर जाना, घंटों गप्पे मारना, फिल्में देखना, शरारते करना, सब कुछ साथ साथ में होता था। दोनों के पिता का ट्रांसफर हो गया और दोनों सहेलियां अलग अलग शहर में चली गईं और अलग अलग कॉलेज में पढ़ने लगी। कुछ समय बाद पत्रों का आना जाना भी खत्म हो गया और दोनों सहेलियां बिछड़ सी गईं। अब इतनी सारी बातें थी कि कहां से शुरू करें और कहां पे खत्म।
2: तुमने ड्राइविंग कब से शुरू कर दी भाई?
1: बस सीख ली। अब यूं कह सकते हैं कि समय अनुसार सारे काम अपने आप आ जाते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और कहां रहती हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं?
1: मेरे हस्बैंड वैसे तो व्यापार करते हैं और ज्यादातर पता है अंजू विदेश दौरे पर रहते हैं, यहाँ कम ही रहते हैं।
2: वो तो तुम्हारे कपड़ों से दिख रहा है। और बच्चे?
1: बच्चे बस समझ लो कि बच्चे बड़े बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में।
0: अरे अच्छा है, मुझे देखो मेरे बच्चे। ओ बच्चों के नाम पे याद आया, नमिता रूही आने वाली होगी स्कूल बस से। ओहो नमिता, वो परेशान हो रही होगी, मुझे अब चलना होगा। आना ना एक दिन, मैं तुम्हें एड्रेस बताऊंगी।
1: अरे तो तुम जा कहाँ रही हो अंजू? आओ ना मेरे साथ कार में बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी वहां तक। चलो ना, इसी बहाने रूही से मुलाकात भी हो जाएगी।
0: पर घर पास में ही है नमिता, मैं चली जाऊंगी।
1: ओहो इतना फॉर्मल कब से हो गई अंजू? याद है मेरे टिफिन से भी मेरे गोभी के पराठे सारे तुम चट कर जाती थी और मुझे कुछ नहीं मिलता था।
0: और एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ती थी।
1: हाँ याद आ गया ना।
0: और तुम भी तो घर चलकर कहती थी कि घर चलकर खाना, चाची ने और बनाए होंगे, है ना, याद है?
1: हाँ बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं उन प्यारी प्यारी बातों को, उन प्यारी प्यारी यादों को। चलो चलो अब कोई बात नहीं, आओ बैठो गाड़ी में बैठो, चलो चलते हैं।
0: नमिता ये बाएं ले लो, वो सामने है हमारे घर की बिल्डिंग।
1: अच्छा वो वाला? ओ चलो बस ये आखिरी टर्न है और ये आ गया तेरा घर।
0: वो देखो रूही खड़ी हुई है। ऐसा करती हूँ मैं उसको लेकर आती हूँ और चलो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह बहुत प्यारी लग रही है।
0: रूही गेट पर होंठ पिसूरे आंखों में बड़े बड़े मोती लिए खड़ी थी। अंजू को कार से उतर कर देख के वो हैरान रह गई। ये आंटी कौन है, उसने पूछा। जब उसने पलट कर देखा तो नमिता उसके भारी भारी थैले उठाए लिए चली आ रही थी। उसने भागकर हाथों से थैला ले लिया और सोचने लगी अब नमिता को घर चलने के लिए कहना होगा, पर घर तो सारा बिखरा हुआ है, सुबह से वक्त ही नहीं मिलता और अक्सर वो बेटे को बस स्टॉप पर छोड़कर आने के बाद ही घर संभालती है, और आज तो वो सुपरमार्केट चली गई थी। सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। नमिता तो बहुत सलीके वाली लग रही है, क्या सोचेगी? अच्छा हो वो कह दे अभी वो जल्दी में है, फिर कभी आएगी। अंजू फिर बहुत जिद करेगी कि उसे जरूर आना होगा और एक दिन सब कुछ व्यवस्थित करके ही बुलाएगी उसे। हाँ, पर अभी तो रस्म निभानी ही होगी, ये सोचकर अंजू बोली,
2: नमिता चलो ना घर चलो, एक कप चाय तो पीकर जाओ।
1: हाँ हाँ जरूर, अब इतने सालों बाद मिले हैं तो फिर कैसे जा सकती हूँ ऐसे, और वो तुम्हारे हाथ की यमी वाली चाय, चलो चलते हैं।
2: नमिता ये रहा मेरा छोटा सा घर, माफ करना घर बहुत बिखरा हुआ है, और ये मत सोचना कि हमेशा ऐसा ही रहता है।
1: आप तुम मुझे सफाई मत दे अंजू, मैं तुम्हें शुरू से जानती हूँ, बहुत कामचोर थी तुम।
2: अरे नहीं भाई,
1: और आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। हाँ नॉवल पढ़ती होगी बैठ के।
2: अरे नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पर टॉवल और ये सब बच्चों ने कपड़े बिखेरे हुए हैं, जल्दी जल्दी मैं समेट लेती हूँ। नमिता तुम बैठो ना यहाँ पर।
1: अरे ठीक है ना अंजू, परेशान क्यों हो रही हूँ, मैं कोई गेस्ट थोड़ी ना हूँ यहाँ पर। भाई बच्चों वाला घर है तो बिखरा अच्छा ही लगता है। आओ बेटा आवरूही, मैं तुम्हारी टाई खोल दूं। अंजू पहले इसे खाना दे देते हैं और फिर बाद में घर संभालती रहना, है ना, इसे भूख लगी होगी ना।
0: अंजू अब भी यही सोच रही है कि खाना भी तो इतना सादा सा बनाया है, बच्चों की पसंद वाला दाल चावल और भिंडी। खाने का समय हो रहा है, नमिता को खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा। ओहो वो किसी संडे को क्यों नहीं मिली, घर भी सजा संवरा रहता है और किचन भी भरा पूरा। नमिता के आधुनिक पहनावे और महंगी कार को देखकर अंजू को यकीन हो गया था कि वो बहुत ही अमीर है। अब ऐसा सादा खाना तो शायद ही उसे पसंद आए। अंजू के पति की इनकम तो अच्छी थी और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। इस महंगे शहर में उसका अपना दो कमरों का घर था, उसे कोई शिकायत नहीं थी, पर दो बच्चों की देखभाल और घर बाहर संभालते वो थोड़ा खींच जाती थी। रूही को खाना देकर नमिता से खाने के लिए पूछ ही लिया और नमिता ने झट से हाँ कर दी। मैं ऐसा करती हूँ नमिता, कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल सा बना लेती हूँ।
1: अरे इतनी अच्छी इतनी टेस्टी सब्जी है, और क्या बनाना चाहती हूँ, कॉम्प्लीमेंट दूँ क्या? कुछ और मत बनाओ, दाल चावल सब्जी यही तो मेरे लिए सबसे अच्छा कंप्लीट मील है, पता है तुम्हें।
2: ठीक है ये लो, साथ में दही पापड़ अचार और सलाद भी रख दिया है, ठीक है?
1: हाँ बिल्कुल, अचार, आहा यम्मी।
2: सच बताना नमिता, तुम यूं ही तारीफ कर रही हो या वाकई तुम्हें ये सादा सा खाना अच्छा लग रहा है?
1: नहीं सच में बहुत टेस्टी है ये खाना, और घर का बना खाना कितना अच्छा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात पता क्या है अंजू, आज हम साथ साथ खा रहे हैं।
2: वो तो है।
0: नमिता ने ऐसे चटकारे लेकर खाए जैसे जाने कितना स्वाद हो। अंजू को लगा वो उसका संकोच मिटाने के लिए इतनी तारीफ किए जा रही है। डोंगे के लिए हाथ बढ़ाते सलाद लेते नमिता के हाथों पर नजर पड़ी अंजू की, और अंजू ने अपनी उंगलियों की तरफ देखकर उन्हें समेट लिया। नमिता के कोमल हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे, लंबे नाखून शेप में कटे थे और हल्के रंग की नेल पॉलिश लगी थी। अंजू तो कभी नेल पॉलिश लगा ही नहीं पाती, कभी लगा भी लिया तो उसी समय रूही या रोशन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या कुछ गिरा देते हैं या फिर चोट लगा लेते हैं। सबके सोने के बाद कभी नेल पॉलिश लगाने की कोशिश भी करती है तो इतनी थकी हुई होती है कि हाथों में नेल पॉलिश की शीशी लिए हुए ही सो जाती है और फिर होश भी नहीं रहता। अभी भी नाखूनों पर आधे उजड़े नेल पॉलिश बड़े भद्दे से लग रहे हैं, याद ही नहीं रहता कब उसने ध्यान से अपना चेहरा आईने में देखा हो। हमेशा भागम भाग लगी रहती है। अंजू सोच रही थी दोनों की उम्र एक है पर कितनी अलग लग रही है नमिता।

नमिता उसके मन में उठते इन गुब्बारों से निरपेक्ष पुरानी बातें याद करने में लगी थी। वो स्कूल से लौटते हुए लंबा रास्ता चुनना कि घर जल्दी ना आए, डेस्क पर सर झुकाकर कागज में लिपटे कच्चे टिकोरे नमक के साथ खाना, वो किताबों के बीच रखकर बाल पॉकेट बुक्स पढ़ना, कॉरिडोर में टीचर्स के चाल की नकल करना और कभी कभी पकड़े जाने पर एक्टिंग करना कि चोट लगी है। नमिता की बातों में वो भी वर्तमान को भूल गई, स्कूल के दिनों में पहुंच गई। खाने के बाद भी सोफे पर जमी दोनों सहेलियां स्कूल मोहल्ले की बातें याद करके देर तक हंसती रहीं। रूही

आराम से मौके का फायदा उठाकर टीवी देखती रही। शाम होने को आई तो रूही ने ही याद दिलाया कि रोशन के आने का वक्त हो गया है। नमिता साथ ही बस स्टॉप तक आई और रोशन को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया, फिर आने का वायदा कर उससे आने का वायदा लेकर चली गई। नमिता के जाते ही अंशु बहुत अनमनी हो गई। दोनों सहेलियां एक साथ ही पढ़ती थी, घर का बैकग्राउंड भी एक सा था, पर आज दोनों की जिंदगी कितनी अलग है। नमिता यूं बिंदास, जहां मन होता है घूमती है। भाई बच्चे हॉस्टल में हैं और पति विदेश में है, पैसे हैं, गाड़ी है, जिधर मन हो चल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। रोकते टोकते तो उसके पति अवनीश भी नहीं है, पर वो क्या करे, दोनों बच्चों का स्कूल, उनके होमवर्क, उनकी ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, कराटे क्लास, फिर शॉपिंग, खाना बनाना, घर संभालना, देखरेख करना, मेहमान नवाजी, इन सब के बीच वो चक्कर घिन्नी सी घूमती रहती है।

नई चप्पलें डब्बे में ही बंद रह जाती हैं और वो एक ही चप्पल को घसीटती रहती है। मजाक में नमिता ने भी कह दिया, जरूर नॉवल पढ़ती होगी। कितना शौक था उसे फिल्में देखने का, नॉवल पढ़ने का, पर अब ये सब किए हुए तो जैसे एक युग बीता, समय ही नहीं मिलता, बस बच्चों की कोर्स बुक ही पढ़ती रह जाती है।

0: अंजू के पति अवनीश ऑफिस से आए तो भी अंजू अपनी सोच में ही गुम थी। पति ने भी पूछा अंजू से, क्या तबीयत ठीक नहीं है? उसने टाल दिया, सब ठीक है। पर सबके सो जाने के बाद भी अंजू की आंखों में नींद कहाँ। बार बार नमिता का खिला खिला चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता, अपनी बुझी सी सूरत भी दिखाई देती और अंजू का मन और बुझ जाता। क्या हो गई है जिंदगी उसकी, सारा दिन काम काम और बच्चों में सर खपाना, सुकून के दो पल भी नहीं मिलते उसको। एक काम निपटाती भी नहीं है कि दूसरे काम का ख्याल दस्तक देने लगता है। पूरे दिन बस भागम भाग भागम भाग। बच्चों को भी हरदम डांटती रहती है। 10 साल और 8 साल के दोनों बच्चे शरारते भी तो कितना करती है। वो सब समझती है, यही तो उम्र है उनकी शरारते करने की। पर अंजू करे भी तो क्या, वो थक जाती है। आज नमिता ने गोद में बिठाकर कितना प्यार किया दोनों को, और कितना खुश दिख रहे थे दोनों बच्चे, बार बार जिक्र कर रहे थे आंटी ने इतना प्यार किया। अंजू को याद नहीं पड़ता उसने बच्चों को गोद में बिठाकर कब पुचकारा था। कुछ दिनों बाद नमिता अवनीश से मिलने आई, इस बार हल्के गुलाबी रंग के सलवार कुर्ते में और भी नाजुक लग रही थी, पर व्यवहार बहुत ही सहज था। अवनीश भी मिलकर बहुत खुश हुए। देर तक बातें चलती रहीं, फिर बोली, कल मैं अंजू को अपने साथ ले जाऊंगी, दरअसल वरुण टूर पर गए हैं, थोड़ा वक्त अंजू मेरे साथ रहेगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जब ये कहा तो अवनीश हंस पड़े और उन्होंने इजाजत दे दी और बोला कि बच्चों की भी चिंता न करें, और दोनों सहेलियां आराम से समय बिताएं। अगले दिन ठीक 3 बजे नमिता गाड़ी लेकर आ गई।
1: अंजू अंजू आ जाओ, नीचे आ जाओ जल्दी से, मैं आ गई, देखो घड़ी मिलाओ जल्दी से, 3 बज गए हैं, तैयार होना बिल्कुल।
0: चलो नमिता, मैं आ गई हूँ, चले। नमिता के घर के बाहर ही दरवाजे के दोनों तरफ 2 प्लांट सजे थे। एक एक पत्ता ऐसे चमक रहा था जैसे अभी अभी धुले हों। बाहर से ही अंदाजा हो गया था कि घर का अंदर का रख रखाव कैसा होगा। घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित, सफेद रंग का सोफा, बीच में कलात्मक सी कांच की मेज, और मेज पर सजे एक बाउल में रंग बिरंगे पत्थर, हर कोने में गमले में सुंदर प्लांट, और प्लांट के नीचे मूर्तियां, सुंदर साफ चमकती दीवारें और उन पर लगी पेंटिंग्स पर गिरती हल्की सी रोशनी। अंजू को लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। अंजू को नमिता ने बताया कि जब वरुण पहली बार इस घर को दिखाने लेकर आए थे तो ये घर उसको भी महल जैसा लगा था।

0: अंजू को बैठने के लिए कहकर नमिता शेल्फ में से एक फोटो उठा लाई। ये देखो, ये तो बड़ी प्यारी फोटो है। कौन है ये?
1: ये मेरे दोनों बेटे पराग और परिमल।
0: अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर देखो कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं ना। फोटो दिखाती नमिता इतने प्यार से तस्वीरों पर हाथ फेर रही थी मानो वो तस्वीरें नहीं बच्चों का मुंह हो। अंजू के भीतर कुछ जोर का दरक गया। बहुत मिस करती है नमिता अपने बच्चों को। उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई अंजू की। भरी हुई आंखें थी। नमिता भी हाथों में तस्वीर थामे बच्चों के चेहरों को एकटक देखते हुए कहीं खो सी गई। उसे उबारने के लिए अंजू ने ही जोर से कहा, अरे पानी तो पिला।
1: देखो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। आके बातें करने लगी और पानी पूछना भी तुम्हें भूल गई, वो भी तुम्हें मांगना पड़ा। ओ, मैं आज भी वैसी ही हूँ, है ना। अभी
0: नहीं।
1: लेकर आई, अभी लेकर आई। याद है अंजू, तू संकोच कर।

0: रही थी घर कितना बिखरा हुआ है, और यहां देख घर बिखेरने वाला कोई नहीं। पता है, जानबूझ कर कभी कभी चीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं कि हाँ बाद में कभी समेट लूंगी इन्हें। क्या बताऊं, चलो छोड़ो। हाँ,
1: पर एक बात बताओ, बच्चों को हॉस्टल क्यों भेज दिया?
0: बस यूं समझ लो वरुण का मन था बच्चे इंडिपेंडेंट बने, बड़े कैंपस वाले स्कूल में पढ़े और जहाँ सब कुछ हो, घुड़सवारी हो, तैराकी हो, सब कुछ सीख सकें, पहाड़ों के बीच खुली जगह में स्कूल हो।
1: अच्छा।
0: वैसे अंजू, मैं शिकायत तो नहीं कर रही, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, पर पता नहीं क्यों सोचती हूँ इस अकेलेपन का क्या करूँ।
1: नमिता,
0: छोड़ो अंजू, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। चल बता, क्या खाएगी तू? उस दिन तेरे यहाँ जमाने के बाद दाल चावल सब्जी खाई और साथ में दही, क्या स्वाद था।
1: लेकिन ये बता, तू करती क्या है सारे दिन? मेरा मतलब है कि समय कैसे काटती है भाई? अगर ऐसी बात है तो तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती नमिता? मेरा मतलब है कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी।
0: तूने नौकरी की बात की है इसलिए बता दे रही हूँ। कभी किसी जरूरतमंद का हक मारूं ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और जहां तक परिवार की बात है, नौकरी की जरूरत कहाँ है ना? जैसा मिला है बस ठीक है, समझौता कर लिया है अपनी जिंदगी से, बस यूं समझ लो अंजू। और नौकरी इसलिए भी नहीं कर सकती, जब बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा समय उन्हीं के साथ बिता लूं, ये समय बस यहीं रुक जाए और उनके साथ ये समय प्यार से बीत जाए, बस यूं समझ लो उनकी छुट्टियों का इंतजार रहता है मुझे।
1: पर उसके अलावा क्या करती हो नमिता?
0: खाली वक्त में,
1: हाँ।
0: खाली समय में अनाथालय चली जाती हूँ या फिर ओल्ड एज होम चली जाती हूँ, बस ऐसे ही बच्चों के बीच और बुजुर्गों के साथ समय बीत जाता है, अच्छा लगता
1: अच्छा।
0: है वहां जाकर, तन्हाई दूर हो जाती है, बस यूं समझ लो।
1: ओह नमिता।
0: सच कहूं तो अकेले घर काट खाने को दौड़ता है, कम से कम यहां कुछ आवाजें तो सुन लेती हूं।
1: अच्छा।
0: चलो छोड़ो, हटाओ,
1: अरे
0: कहां मैं क्या लेके बैठ जाती हूँ, बातों ही बातों में कहां से कहां चली जाती हूँ।
1: पर नमिता, कभी तो किसी से कुछ शेयर भी तो कर सकती है, कुछ दोस्त सहेलियां।
0: चल छोड़, हटा अंजू, कहाँ सोच में डूब गई। कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं पर वो कहाँ समझेंगे मेरे दर्द को। तू तो बचपन की सहेली है ना,
1: हाँ
0: जानती है ना मुझे, बस इसीलिए तुमसे कहने को जी चाह रहा था। अच्छा चल बता, क्या बनाओ तेरे लिए। चल किचन में चलते हैं, दोनों कुछ अच्छा सा बनाते हैं, प्याज

0: अनामिता को किचन में काम करते देखकर लग नहीं रहा था कि उसे आदत है काम करने की।
1: अरे याद है नमिता तुझे? हाँ, पहले हम कितना चटकारे लेकर पकोड़े खाते थे, और जरा सी मिर्च पड़ जाए तो बिल्कुल जल जाता था मुंह, पर फिर भी खाना नहीं छोड़ते थे, और फिर भागकर, याद है वो कितना रंगीन सा शरबत पीते थे?
2: सच में वो बातें तो यूं समझ लो बस यादों में रह गई। चलो छोड़ो।
1: और अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि उस ठेले से हम कैसे खा सकते थे, और हमें कुछ होता भी तो नहीं था नमिता, याद है?
2: और आज के बच्चों को देखो कितना ख्याल रखा जाए फिर भी आए दिन बीमार हो जाते हैं। चल मेरी हेल्प कर किचन में, आ दोनों सहेलियां गप्पे मारेंगे।
1: तुझे किचन में काम करके देखकर मुझे लग रहा है अब तुझे काम की आदत बिल्कुल भी नहीं रही। हाँ, ऐसा कर, तू यहाँ बैठ, मैं तलती हूँ पकोड़े, और तू उधर चाय बना, अदरक इलायची मत भूलना।
2: हाँ वो स्वादिष्ट वाली चाय।
1: सच बताऊं, एक अरसे बाद इतनी निश्चिंत होकर मैं चाय पी रही हूँ। घर पर नमिता कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, और सच बताऊं मेरी चाय ठंडी हो जाती है।
2: अरे अब हम अक्सर मिला करेंगे और तुझे हमेशा ऐसे ही गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय पिलाऊंगी।
1: प्लेट से पकोड़े खत्म होते रहे, पर बातों की गगरी छलकी जा रही थी, फिर भी वैसी ही भरी हुई थी। नमिता अपने बच्चों की बातें, उनकी शरारतें, उनकी कामयाबी के बारे में बता रही थी, उसे ये बताते हुए जैसे वो बच्चों के पास ही पहुंच गई हो। नमिता का चेहरा ममता के उजास से दीप्त हो रहा था। अचानक नमिता ने घड़ी पर नजर डाली और भूली,
2: अरे मैं भूल गई, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
1: बच्चे
2: ओ
1: बेटों को फोन करना है नमिता।
2: अरे नहीं, बताया था ना तुम्हें, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम कर रही हूँ, अनाथालय
1: अच्छा।
2: जालती हूँ, बस वही वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
1: अच्छा, आज संडे वाले दिन?
2: आज संडे है ना, रोज की
1: हाँ
2: तरह सड़कों पे यूं जाम नहीं होता, बस
1: हाँ
2: आराम से गाड़ी निकल जाती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाले बच्चों के बारे में कह रही हो क्या?
2: हाँ बस उन्हीं के साथ थोड़ा टाइम बिता लेती हूँ।
1: इनकी जिंदगी भी बहुत अजीब होती होगी, है ना?
2: हाँ अरे मुझे बहुत सारा सामान भी उनके लिए लेना है। एक मिनट रुको, बस मैं अभी आई।
0: डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर से बास्केट में जो फल रखे थे, नमिता ने वो भी थैले में डाल दिए। कई सारी चीजें डालती रही वो थैले में। अंजू चुपचाप सब देखती रही। रास्ते में नमिता ने बताया

0: साफ सुथरा तो रहा होगा, पर इस समय जगह जगह से प्लास्टर उखड़ आए थे और बीच बीच में घास भी उगाई थी। नमिता की गाड़ी खड़ी करते ही पता नहीं कहाँ से बच्चों का एक हुजूम आ गया और घेर लिया नमिता को। दीदी कहाँ थी आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। 12 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चे थे। कपड़े बदरंग, शायद धूप में घूमने से अपना रंग खो चुके थे। कहीं कहीं से फटे पर साफ थे। घुटनों तक की फ्रॉक पहने लड़की या निकर पहने लड़के थे। छोटे बच्चों में से ज्यादा के बाल उलझे हुए थे। अंजू को उनके बिल्कुल पास जाने में हिचक सी हो रही थी, पर नमिता ने एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था और सारे बच्चे एक साथ नमिता का अटेंशन चाह रहे थे, उसको घेर कर बैठे हुए थे। नमिता के जादू के पिटारे से चीजें निकलनी शुरू हो गई थी। उसने सबसे पहले चॉकलेट बांटे, फिर कंघी निकालकर उलझे बाल संवारे, लड़कियों के बालों में क्लिप लगा दिए और छोटा सा शीशा उन्हें पकड़ा दिया। नेल कटर से नाखून काटे, कोई चोट दिखाने लगा तो उसकी चोट पर मलहम भी लगाया और उसने बोतल से रखे पानी से उनके हाथ भी धो दिए। इसके बाद नमिता ने उन्हें कहानियां सुनानी शुरू कर दी, कृष्ण की, बाल लीलाओं की कहानी। बच्चे हंसते और सवाल भी पूछते। सबसे छोटी बच्ची को नमिता ने अपने पास बैठाया था। कहानी सुनाने के दौरान उस लड़की ने नमिता की गोद में अपना सर रख दिया और बेख्याली में नमिता उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अंजू ने आंखें फेर ली। नमिता को इस तरह बच्चों पर प्यार लुटाते देख उसका मन भीग गया। पता चल रहा था कितना मिस करती है वो अपने बेटों को, और उन्हें प्यार करने को तरसता मन इन बच्चों पर बिन बादल बरसात की तरह स्नेह बरसा रहा था। अंजू को ये देखकर बहुत सुकून मिला। अंजू हमेशा सोचा करती थी, जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, उसके पास ढेर सारा वक्त होगा और वो क्या करेगी। अब समाधान उसके सामने था, वो भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया करेगी। समाज ने इतना कुछ दिया है उसे, वो कुछ अंश तो लौटा सके। उधर नमिता अंजू की उपस्थिति भूल चुकी थी। अंजू को भी एकदम से अपने बच्चे याद आ गए। सारा दिन उनकी शैतानियों पर खींचती रहती है, पढ़ने के लिए डांटती है और कभी कभार सामान जगह पर रखने के लिए और शरारते करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा डांटती है। जाने कब से उन्हें यूं पास बिठाकर कभी दुलराया नहीं। उसका मन हुआ कैसे भी उड़कर अभी बच्चों के पास चली जाए और उन्हें खूब प्यार करे। ऐसा करो नमिता, तुम यही रुको इन बच्चों के साथ।
1: हाँ अंजू, सच अब तो मेरी बस यही यही छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। यहाँ आकर इतनी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है मानो बस पूरी जिंदगी ही मिल गई हो मुझे। इन्हीं में अपनी खुशी तलाशती रहती हूँ।
0: अंजू ने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। इस बार उसे कोई झिझक नहीं हुई। अभी ऑटो में ही बैठी थी कि घर से फोन आ गया। अवनीश बोले, कहाँ हो तुम? एक संडे की ही शाम को तो साथ बिताने को मिलती है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। जानती हो बच्चे कितनी कितनी बार पूछ रहे हैं, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। मुस्कुराहट सी आ गई अंजू के चेहरे पर। कभी दूसरा दिन होता तो खींच जाती। मैं जो अकेले शाम बिताती हूँ, ऑफिस से लौटने का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन शाम अकेले बच्चों के साथ बितानी पड़ी तो बुरा लग गया। फिर उसने महसूस किया वो सब उसे मिस कर रहे हैं। बोली, बस आ ही तो रही हूं, पहुंच रही हूं बच्चों के पास, तुम सबके पास।

ये थी कहानी पहचान तो थी पहचाना नहीं, जिसे लिखा था रश्मि रविजा ने। और अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। मणिपुर में 6 नगा नागरिकों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार चलाए गए अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। संदिग्धों से अभी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। अधिकारियों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रस्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 3,70,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film Jai Raj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Humsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannad book Nani Rubude, Nimagagi, Nadi Rubude, Nanagagi Kannada Cinemada, Tatvamattu Rajakiya. Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Mr. Birla also gave his approval to the merger of 6 Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. With the merger of the 6 MPs, the strength of the Shiv Sena has gone up to 13 from 7 in the lower house of parliament. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the parliament, beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal yesterday addressed the India-Estonia Business Forum in Tallinn during his official visit to Estonia, calling for deeper collaboration in trade, investment, innovation and technology. The forum brought together senior government representatives, industry leaders and business delegates from both countries to explore new avenues for strengthening bilateral economic cooperation. In his address, the minister highlighted India's remarkable economic transformation over the past 2 decades and underscored its emergence as one of the world's fastest-growing major economies. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, CBSE had introduced 2 board examinations for Class 10th from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. CBSE said that overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. Iran's Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, Kazem Gharib Abadi, has announced that Tehran has suspended its commitments under the recently signed Islamabad Memorandum of Understanding, MOU, with the United States, accusing Washington of breaching the agreement. According to Iranian media, Gharib Abadi said the two sides had been engaged in negotiations, but the United States allegedly violated its obligations under the MOU by carrying out what he described as aggressive actions. He further stated that the United States had practically violated and suspended all of its commitments, adding that Iran had also responded by suspending its own obligations under the Islamabad Memorandum of Understanding. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium today. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. France's World Cup campaign came to an end after a semi-final defeat against Spain. England, on the other hand, will aim to secure its best World Cup finish since lifting the trophy 60 years ago. And that is the end of this news bulletin.

मेरी तरह, क्यों मेरी तरह रातों को रहता है परेशान, क्यों मेरी तरह रातों को रहता है परेशान। ऐ चांद बता किससे तेरी आंख लड़ी है, ऐ चांद बता किससे तेरी आंख लड़ी है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान, आवाज है किशोर कुमार की।

रात उतर आई थी धीरे धीरे, मानो आकाश ने अपने प्राचीन इतिहास का एक और पृष्ठ खोल दिया हो। चांद, चांद आज किसी विजेता की भांति नहीं, एक विनम्र साधक की तरह नभ के मध्य विराजमान था। उसके उजले मुख पर युगों की यात्राओं का धैर्य था और अनगिन ऋतुओं की स्मृति। मैंने अपने मन से पूछा, तुझे इस चांद में ऐसा क्या दिखाई देता है? मन ने कहा, मुझे इसका प्रकाश नहीं, इसका संयम आकर्षित करता है। यह कभी सूर्य बनने का आग्रह नहीं करता, फिर भी असंख्य पथों का सहचर बन जाता है। रात मुस्कुराई। उसने चांद के चारों ओर नील विस्तार का ऐसा मंडल रचा जिसमें किसी को छोटा सिद्ध करने की कोई चेष्टा नहीं थी। वहां केवल संतुलन था और उसी संतुलन में सृष्टि का सौंदर्य निहित था। मन फिर भटकने लगा, कभी बीते वर्षों की तरह और कभी आने वाले दिनों की तरह। चांद से देखता रहा जैसे कोई अनुभवी ऋषि अधीर शिष्य की गति समझ रहा हो। तभी एक शीतल किरण धरती तक उतरी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना बताया जिसे स्वयं से मिलने का साहस मिल जाए। उसे संसार से शिकायत कम रह जाती है। मैंने देखा, रात किसी रिक्तता का नाम नहीं थी, वह तो विचारों की विशाल नदी थी जिसमें मन अपनी असंख्य आकृतियां देखता, टूटता, संवरता और अंततः अपने ही तट पर लौट जाता। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है तीन देवियां।

रात्रि ने जब दिशाओं के द्वार बंद किए, तब आकाश के मध्य एक उजला वृत्त धीरे धीरे खिल उठा। चांद किसी राज सिंहासन पर नहीं था, वह तो मानो अनंत की गोद में बैठा पृथ्वी का हाल पूछने आया अतिथि था। मेरा मन उसकी ओर बार बार देखता, फिर स्वयं में लौट आता। उसे लगा दूरी केवल कदमों की नहीं होती, कभी कभी विचार भी मनुष्य को अपने ही भीतर बहुत दूर तक ले जाते हैं। चांद ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसकी उजली आभा मन के बिखरे हुए कोनों तक पहुंच गई। तभी अनुभव हुआ, जिसे हम खोज कहते हैं वह बाहर से अधिक भीतर की यात्रा है। रात्रि समाप्त हुई, किंतु मन में एक प्रश्न जीवित रहा। यदि आकाश इतना विस्तृत होकर अपने सभी रहस्यों को संजो सकता है, तो मनुष्य के हृदय क्षमा और करुणा के लिए क्यों संकीर्ण हो जाता है? और इसी प्रश्न के साथ एक नई सुबह जन्मी। अगला गीत, फिल्म का नाम है गाइड, आवाज है लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की।

एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पे मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ मैं यारों, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, मुझे चलते जाना है। कितनी सुंदर पंक्ति है और कितनी गहरी बात है। बस इस गहरी बात में छुपे हुए छोटे से संदेश को हम कभी नहीं समझ पाते और हम बड़े प्रश्नों में, बड़े सवालों के हल ढूंढने में रह जाते हैं। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज़ है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्ते को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक इस यात्रा के दौरान 370,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। खेल खबरों में फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film Jay Raj said, Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmyugam and Chandu Champion.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक की।

ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। अगला गीत, फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी, आवाज है मुकेश और लता की।

आज दिन ने कई बार मुझसे अपने होने का हिसाब मांगा। घड़ी ने भी अपनी सुइयों से मेरी उलझनों को नापा, पर मैंने हर प्रश्न को धीरे से किनारे रख दिया, क्योंकि आज मैंने एक ही काम किया, सिर्फ तुम्हें याद किया। सिर्फ तुम्हें याद किया, ना कोई अधूरी सूची थी, ना कोई लक्ष्य का दबाव, ना ही दुनिया के तर्कों का शोर। बस तुम्हारी याद मेरे भीतर ऐसे उतरी जैसे किसी पुराने गीत की धुन बिना आवाज के भी मन में गूंजती रहती है। मैंने रसोई में उबलती चाय के साथ तुम्हारा नाम मिलाया और ये देखा कैसे एक साधारण सा स्वाद अचानक गहराई में बदल जाता है। मैंने किताब खोली, पर अक्षरों के बीच तुम्हारा ही चेहरा उभर आया, जैसे हर शब्द तुम तक पहुंचने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। आंगन में आई धूप आज कुछ अलग थी, उसमें एक परिचित स्पर्श था, जैसे तुमने दूर रहकर भी मेरे दिन को थाम लिया हो। तुमने दूर रहकर भी मेरे दिन को थाम लिया हो। अगला गीत हेमलता की आवाज में, फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लेकिन, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि फिर मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लिया जाए। पर चलते चलते याद दिलाने के अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद भारती होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना

मिदास को और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं अभय जोधपुरकर और विकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कड़ू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्रात रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। इन 6 सांसदों के लिए विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाए गए 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96% 7-8% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूँ और प्यार भरा मेरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

अभी आपने गीत सुना फिल्म आप आए बाहर आई से। दिलबर का साथ जिंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात है। सच्चा प्यार हर धड़कन को मुस्कुराने की वजह दे जाता है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम चल रहा है हम राही। जब प्रेम सच्चा होता है तो प्यार और विश्वास मिलकर हर कहानी को यादगार बना देते हैं।

प्यार में डूबा दिल हर पल अपने प्यार की खुशियों की दुआ करता है और सच्चा प्यार दिल को मासूम और जीवन को सुहाना बना देता है।

दिल की दीवानगी तभी सुंदर लगती है जब उसमें सम्मान और अपनापन हो। प्यार का एहसास हर पल को खास बना देता है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइए। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हैं। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने OMR शीट की जांच के संबंध में छात्रों और अभिभावकों के लिए एक सख्त परामर्श जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि हाल ही में समीक्षा के लिए जमा की गई कई OMR शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनाई पाई गई, जिसके कारण सभी शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। NTA ने कहा कि वह हर शिकायत की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि नकली या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर शिकायत करने वालों को गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननीतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेश से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इस समय ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने फ्रांस पर 4-3 से बढ़त बना रखी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज फाइनल में सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनुराग से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इस गीत के संगीतकार एसटी बर्मन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म आनंद से मन्ना दे की आवाज में, गीतकार योगेश, संगीतकार सलील चौधरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम है अरुणिमा और कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज़ में, गीतकार योगेश, संगीतकार पप्पी लहरी.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,

साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सच्चाई से, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में, संगीतकार शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है अरुणिमा।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म बसेरा से लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार गुलजार, संगीतकार आरटी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सदमा से सुरेश वाडकर की आवाज में गीतकार गुलजार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लावा से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून सत्र कल से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनटीए के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए फर्जी दस्तावेज या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट का इस्तेमाल करना गलत है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करते हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजीलॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

0: चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस. टेररिज्म धंधा है. इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी. अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे. सेम सिचुएशन वैली में.
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं. इसके तहत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है. साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननैतिक सफलताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है. E20 से विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है. जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है. मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी. यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा. गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए. ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा. पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है. महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया. प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा. इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा. The government has convened an all-party meeting today ahead of the coming monsoon session of the parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10th Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal. In line with the recommendations of the National Education Policy, CBSE had introduced 2 board examinations for Class 10th from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. CBSE said that overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. The NTA stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or AI-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said, "Students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant." In Jammu and Kashmir, Shri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. An official said the decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of the pilgrims. The official said no onward movement of Yatris will be allowed from the Baltal and Nunwan Chandanwari base camps until further orders. The Yatra will resume after the routes are declared safe following a comprehensive assessment of the weather conditions, the official added. The BJP has described the government's ethanol blending program E20 as one of India's biggest public policy successes, saying it has boosted farmer incomes, strengthened energy security, and reduced dependence on imported crude oil. In a social media post, BJP IT cell chief Amit Malviya said, "The program deserves a holistic, evidence-based assessment rather than partisan critique driven by political point scoring," adding that public policy of such scale should be judged by measurable outcomes. Calling the achievement of 20% ethanol blending one of India's most consequential policy successes, he said the initiative had simultaneously advanced farmer welfare, rural development, cooperative institutions, energy security and environmental sustainability. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has addressed the India-Estonia Business Forum in Tallinn during his official visit to Estonia, calling for deeper collaboration in trade, investment, innovation and technology. The forum brought together senior government representatives, industry leaders and business delegations from both countries to explore new avenues for strengthening bilateral economic cooperation. The forum commenced with welcome remarks by Minister of Foreign Affairs of Estonia, Margus Tsahkna, followed by the inaugural address by Mr. Goyal. In FIFA World Cup, England defeated France 6-4 in a historic 10-goal thriller to secure the bronze medal in the 2026 football tournament. Third place playoff at Miami Stadium. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।